कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का कान बहुत अभिमान है।

जो हर सेवे संत भगत तिन के सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर तायो, मल काटी कटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जपियो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैवागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह न सके, प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तना श्री मेरा चौथा। हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर वाणी। जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमक पल। सब के लिए पाप लह जानी। रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ।

स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाती पूछ पुकानी जिनके बड़े पाग वड ऊंचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी त्रासवी मैला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर

पाती नानक जन तुमरी शरणाई हर रासो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा कल युग का कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जप्यो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साख जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरि सब संग भय हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ति आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बने आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पै है सखाई। तनासरी मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर बनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी मेला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ। जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिनके शब्द लिहारे जाऊ। रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम दियो सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी।

जा नहीं रहा, आपे गुरचेला है, आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसे, और सब त्याग को है हर पानी, त्रासी मैला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जा के वस है काम देना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना राव, जय हर सिमरन भयाते उपाद गत कीनी, वड पागी हर जपना, जन नानक कौ।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे ओट पराग मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे पगत को है दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करें सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे जो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। रात्रि मेला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो

किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो टीठा अमृत बूठा, शब्द लगो गुर मीठा, जल थल मई अल।

कयो परदास सदा सुख मन में सतगुरु पूरा पायो राव गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोहता का हो मैं रोग मिटे कृपा ते जमते पे विवाका गुर की पहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काडे तिस गुर के कुर्बानी सनातरी मैला पंजवा जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन्हीं सुनिया दुख सुख मेरा तो बिदनी की खटानी जी की एक ही पैमानी अगर

होते, तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांसे कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर्पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई बर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में, जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद, ईहा ऊहा सर्व शोक की जिसे हमारी चिंद रहाओ, जाके सिमरन सर्व निधाना मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगना से पगत बांचे सब तूरी, सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना, शीतल शांत मां सुख पाया संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव। जात पात तमन गसदा कर उर्द ताप लै गैन ए बिद न कतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन। सनातनी महला पंजवा बंगन ते

संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संतो बार हर के दास।

नानक शरण पर्यो दुख पंजन गुण गावे सदा आकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासरी मैला पंजवा अधर राखन चितारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण सुंगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांछे नित नानक पुनः पुनः।

आधार जन का रास पूंजी एक तौन मान दी बाण साचा नानक की प्रगटेक सनातरी मैला पंजवा। फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

सब कुल कारण हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा।

संग ना चाले तिन स्यों हीत, जो गहराई से ही मीत। ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा। सात तरम नहीं पावे दीठा, चूठ तो स्यों रच्यो मीठा। दात प्यारी विसर्या दातारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठरोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे। हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताने। जो तुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान। नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तना श्री मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार। खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम। हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार। साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अत मस्कीनी। संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के पगत गोविंद। सुख संतन के बिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र। तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम। उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम। देकर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुण पास। प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीवे संतां दूर। तनाश्री मैला पंजवा, सो कट डरे जे खत्म समारे। डर डर पचे मन मुख विचारे। रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव। सफल मूरत जाकी निर्मल सेव। एक निरंजन जाकी रात, मिल साध संगत होवत प्रगास। जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए। जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जाके मन तन बासे। जिसनो आप लए लड़ लाए, दरगह मिले तिसे ही जाए। सेई पगत जे साचे भाने, जम काल से पए निकाने। साचा साहिब सच दरबार, कीमत कौन कहे विचार। काट काट अंतर सगल आधार, नानक जाचे संत्रेनार। तनाश्री मैला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर बाहर तेरा दरवासा, तू जन कहे संग। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी। सामसलत परवान रहाओ, पत परमेश्वर गत नारायण। तन गोपाल गुण साखी, चरण शरण नानक दास। हर हर संति ए विद जाति, तना श्री मैला पंजवा। सगल मनोरथ प्रभ से पाए, कंठ लाए गुरु राखे। संसार सागर में जलन न दीने, किने न दुसर पाके। जिनके मन साचा विश्वास, तेक तेक स्वामी की शोभा। अनद सदा उलास रहाओ, चरण शरण पूरन परमेश्वर। अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो। नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा, जय जय पेखो तें हजूर। दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा त्याय। ईत ऊत नहीं बिछड़े, सो संगी गनिये। दिन सजाए जो निमक में, सो अल्प सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे, कट ऊन न होई। सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अचल अछेद अपार प्रभ, ऊंचा जाका रूप। जप जप करे आनंद जन, अचरज अनूप। सामत देव दयाल प्रभ।
جس تمہیں ارادہ نانک منگے دان پرب رین پگ سادا سنا شری میلا پنجواں جن تم پیجے تنہیں بلائے سکھ سہج سیتی کر آؤ اند منگل گن گاؤ سہج تن نیکل راج کماؤ تم کر آو میرے میت تمرے دوکھی ہر آپ نوارے اپدا پئی بتیت رہاؤ پرگٹ کینے پرب کرنے ہارے ناسن پاجن تھاکے پر منگل واجے نت واجے اپنے ختم نواجے استھر رہو ڈولو مت کبھو گر کے بچن آدھار جے جے کار سگل پو منڈل مخ اوجل دربار جن کے جیت نہیں فیرے آپے پیا سہائی اچرج کیا کرنے ہارے نانک سچ وڈیائی.

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। किस त्यों ना लाई हीत, जा को किस ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जा कै संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जा को कृपा की जय, तना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिख्या विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जाको रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार, नानक मन लगना। तनाश्री मैला पंजवा, कर सतवा इको ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद विचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कार अठवा दो पदे इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। साथ साथ संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जत कत मोहि रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न सा कह जा ले रहाओ। निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनाश्री मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, पाको कोए न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, तनाश्री मैला पंजवा। दर्भवंत दर्ब देख गर्भ, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवारे, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनाश्री मैला पंजवा, जांको हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै। जांका सतगुरु पूरा, ठाकुर गाये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही अरे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। तनाश्री मैला पंजवा,
जतन करे मानुख डहकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेख करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उतते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुते नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की सरदा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी मेला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता दिल सुना कतहू जात सत गुर पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी।

जैसे कागज के पार मूसा तूप गवावत काम नहीं गावारी रहाओ। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ते बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी। सनासरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने के चरण कमल निधाती रहाओ। जिसका साथी नहीं रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती। तनासी मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ। सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नान के आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप। सनासरी मैला पंजवा चतुर दिशा की नो बले अपना सिर ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शन्द

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सोग अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाय प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक सनातरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम सनासरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की हो गया तत्चार करन हार रखवाला होआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर कारो पूजा कह फूप से पाड़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजय। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजय। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस्त्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वडे भाग पेते गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम से आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। शक्ति रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण से आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई होआ कर्मरत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में तैनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सांस्यो मन न लगाना, जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाना। तनासरी मेला नावा तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता सुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लोह समानो, हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा अब मैं कौन उपाय करूं, जे बिद मन को संसा चूक है, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यो उदर परो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो। त्रासरी महला पहला कर दूजा।

पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम पगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नारे नाथ से शरणाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सनासरी मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जै देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुर पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभु के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभु मन पति आया, पर पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे को भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभु तुझ सा लाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए।

आवे। कोई ऐसो रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत, ठाकुर से मेरा रंग लावे। परे रे सगल वेद न चूके मन तेद, एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ न आए अंग बुद्ध मैल लाए, पर को ठाकुर एक तिल न माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। सगल आश्रम कीने मनवा ने पति ने, विवेकहीन देही तोए। कोई पाये रे पुरख विधाता, पार ब्रह्म के रंग राता, मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता, गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे। जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत, गुरु प्रसाद को नेत्रों के खै। मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे, बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी। कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभु की कथा सुनाई, तिस पेटे गत हुए हमारी। तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए, गुर के शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद, सुख नानक लादे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल जातरा, हावन जान रहे।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उलट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दया मते, तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत सते, आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को एके वड आखी है, हम मूर्ख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा, पूछ करें आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन टोट न पगत पंडारी पर पुर रहया सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया फेर न सके कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोई आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाय सच में साच समाना, आप उपाय आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई ना।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आईए जियो, सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाईए जियो, गुण गाए विगसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे, अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे, आप करता करे सोई आप दे सा पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुरु जियो, हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

तेरी फिरे बदक जो कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते आपा पशु न बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको अचरज काहो जो जल जल में पैसना निकसे त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा जो तन कांसी तजे कबीरा रमैये कहान हो रा। रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई परम न पूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो ओछे तप कर बाहुर एबो क्या मांगो किछ थिर नाही राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिदे बड़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई अजामल गज गनका।

आए, ऊपर मंडप छाए, मारकंडे ते को अधिकाए, जिन तृण तर मुंड बलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जोजन चक्र चले था, देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती, रावण से अधकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा स्यो करत ठगौरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर, बिख को मार कडावो, पाछे बौर न आवन पावो, अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, ते तज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या परमो, ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बालहा, क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसुला, जो तरणी को कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा, चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा, असदा अस उसदा हर का बागरा, नाचे पिंडी में सागरा रहाओ।

जम कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। सना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पय उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे।

गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ संतरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारी कर्म कर कपाल मसीत श्री अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मसीत श्री दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटेरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल रा

रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने, मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पणे पज परमानंदे। पीपा कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो तूप दीप नहीं वेदा, कायो पूजो पाती, काया बोखंड खोजते नव निध पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुरु होए लखावे। कन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधननी का, अनाज मंगो सबसी का, गौ पैस मंगो लावेरी, इक साजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना ले वे मंगी। जैत सरी महला चौथा, कर पहला चौपदे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरा ही अरे रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। जैत सरी मैला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी, माया पुअंग दिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा कारी, पाखान डुबत हर राखा। जैत श्री महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिल साधु कपट खुलाना रहाओ, गुर किन किन प्रीत लगावो। मेरे ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना, दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जय श्री महला चौथा।
सतगुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुरु बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके भाग खीर तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाएबा। जैत सरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी देख रैन बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाई है सतगुर माजा, हाँ बलिहारी सतगुर अपने। जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिलियो वडपागी। सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना। हर किए बहुगुण साजा, जिनको कृपा करी जग जीवन। हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा, जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत।

राम जप जगदीश जपो मन महा हर हर जगन्नाथ जग लाहा तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक भगत को महाराम जैत श्री महला चौथा आपे जोगी जुगत जुगाहा आपे निरपौ ताड़ी लाहा आपे ही आप वरते आपे नाम ओ महाराम आपे दीप लो दीपाहा आपे सतगुर समुंद मथाहा आपे मथ मथ तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर हर भगत दृढ़ी मन पाई हर हर नाम ओ महाराम आपे वड दाना वड साहा गुरमुख पूंजी नाम विसाहा हर हर दात करो प्रभ पावे गुण नानक नाम ओ महाराम जय श्री महला चौथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा तार मधुसूदन मिल

राम हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जपो महाराम सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम ना पुजे पुजाहा हर हर अतुल तोल अत पारी गुरमत जपो महाराम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किलविक मैल पाप सोवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम।

प्रसाद सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदे, तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये। जैत सरी महला पंजवा, कर्तीजा दुपदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो। जैसरी महला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभ को नीरो, बेसुमार बे अंत बढ़ दाता, मन है गहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वसया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैसरी महला पंजवा, लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन सह प्रम अंधेरा। थान सनंतर सब नी जाई, जो भी सह सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर ना हुई है फेरा। जैसरी महला पंजवा, काल चौथा दो पदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग, तजी सियानप चिंत विसारी, अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ, जो देखो तौ सगल मोय मोहियो, तौ शरण पर्यो गुर पाग, कर कृपा टहल हर लायो, तौ जम छोड़ी मोरी लाग, तरयो सागर पावक को जाओ, संत पेटे वड पाग, जन नानक सर्व सुख पाए, मोरो हर चरनी चित लाग। जैसरी महला पंजवा, मन में सतगुरु ध्यान तरा, दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभ जियो माया करा रहाओ, ताल जाल अर महा जंजाला, छुटके जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करुणा पत, गयो चरण आसरा, नाव रूप पयो साध संग, पवनिद पार परा, अप्यो पियो गत थियो परमा, कहो नानक अजर जरा। जैसरी महला पंजवा, जाको पय गोविंद सहाय, सुख सहज आनंद सगल स्यों, वाको ब्याद न काई रहाओ, दीसे सब संग रहे अलेपा,
नै व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई जैत श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप जय श्री महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते मां बिखिया ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चित्त

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गहो।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नावा हरजू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास पयो उर अंतर शरण गही कृपा निज तेरी रहाओ महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा तै मरबे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया नाहन गुन नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर्यो शरणागत अबे दान प्रव दीजे जैत श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहाओ जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण परयो जा

0: श्लोक।
1: दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे, हों फिरों खोजंतिया।

आप गवाया। जय तन पाग मथाने बहा पकड़, ठाकुर हों खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने। गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

बधाई। माँ मंगल रह सिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेरहू ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक निर्त न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याए त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन ताको त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैतरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख तरम दूते डिठिया किर्त कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक पर मैं परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग।

खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं।

जिस बिसरत तन भस्म होए, कहते सब प्रेम किन ग्रह में बस न देवई, जिन सोई है कर अनर्थ गर्भ।

बसंत स्वर्ग लोक जितते पृथ्वी नौ खंडने बिसरंत हर गोपाल नानके ते प्राणी उद्यान भरमणे कौतक कोड़ तम

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिष्टं नचमिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानके दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े सच थो।

जित मिलंदड़ो मां फिरी पौड़ी सारे ला कहो कौन है जित प्रभु को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर ध्याय कै मनीछ पुजाई वडे भाग सत्संग हो।

जगत हो जगत गुर स्वामी हम कहीं अते कल जुग के कामी।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो इक मोहत न ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यों तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो इक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन कोख्यो न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया। संग न पायो।

पयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापति ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथू तावो सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए परापत ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

भोग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहां उहां लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। ठोडी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी। मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाए हमारी। रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार, हार पर्यो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निद गायन। सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलाएं। रहाओ जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहुते छूटे, पव जल जगत तरायन। खोजत खोजत तत विचार्यो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हाट्यो। पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला, शिव के बाण सिर काट्यो। रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके, सच का पंखा थाट्यो। खात खर्चत किछ निखुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो। पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया। आगम निगम कह जन नानक, सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किलविख भरे। साध संग भजन कर स्वामी, तापन को इक हरे। रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम न जाही करे। जिसका बोहित तिस आरादे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहे, ओए उहां ही है तरे। जोर सकत नानक किछ नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ। काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ। रहाओ तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास। ताको बिगड़ न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा, हर हर नाम सदा सद जाप। पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी, वसदी की नी आप। रहाओ जिसके से फिर तिन्ही समाले, बिन से सोग संताप। हाथ दे राखे जन अपने, हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना, दया तारी हर नाथ। नानक शरण परे दुख पंजन, जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा, स्वामी शरण परे ओ दरबारे। कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे। रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ विचारे। साध संग परम गत पाये, माया रच बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे। नानक आनंद करे हर जप जप।

आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया, तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी रहाओ, वड़े पाग गुर अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई।

पागड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासित मिट्यो रे। जाको लहनो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भ।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग के तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुर को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत। एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण। बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर रहा, देह विसरव रहा जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किलविख नास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पा

सब देता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस दे का ए उत्तम फल वेद बख्यान।

पागहीन समझत नहीं खल, प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दहन पे मल, तोड़ी महला पंजवा। माई चरण गुरु मीठे, वडे पाग देवे परमेश्वर, कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव, गुण गावत अचुत अविनाशी, काम क्रोध बिनसे मद पीठे, अस्थिर पे सात रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर पजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब चूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, तोड़ी महला पंजवा। साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद होवे दिन राती, अंकुर पलो हमारा रहाओ, गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गए काढ लियो जन अपना, दिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुरु वचनी, बहुर न संकट द्वारा, नानक सर

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उधार, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ न विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ में।

पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू, होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन, छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहि अनत गत, बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वाण, कोई बोले दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो रहाओ। पंडित होए के देर बखाने, मूरख नाम देव राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव सुत्र।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणे के कर हिंग अच्छे पैसर माथे सिंह गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हीग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मजे बेल गो माली के कर केल आछे केल बेल तेल गो संता मजे गोविंद आछे गोकल मजे श्याम।

सुन मन अकथ कथा हर नाम। रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे, पज गुरमत हर राम राम। रहाओ नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ तेतीस त्यायो, नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे, सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिनको, ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको, गुर सतगुर दान दिवायो। रहाओ किस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिलायो। किन किंचक कृपा करी जगदीशर, तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी, दुख हों में रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण।

तारा कोट कुटुंब करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जहाँ का अंश न पारावारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित क्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत हो।

आयो सर्व सुखर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज कुलंग महला पहला कर पहला

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, त्यागड़िए मानरा काय।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

अरे कंक लिया सुहागनी मैं ते वदवी एहे से गुण मुझे न आवनी कै जी दोष करे हे। जिनी सखी सौरावया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेनती करो लियोगी पंथ बताए। हुकम पछाने नानका तो चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारे तो पावे। जो दिल मिलिया सो मिल रहा मिलिया तैयारे सोई जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। तात मिले कुन तात को लिव लिवे को तावे गुर पर साधी जानिए तो अन को पावे। पानावारी हुए कर खरसार न जाने रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो ना

आरतियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिले गुर सुख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए जिन गुर का

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा के पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम से आएंगे ते जन परवाना, तिन विचो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से तिरहड़ी तिना जीव प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

लिया से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गलनाया। जो गुरुमुख नाम से आएंगे किन दर्शन दीजे हम किन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पी जाए। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया। जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर के प्या रंग रलिया माने। सतगुर दाता आपिए उस परे पसाओ है गुर वित्तो सदवारिया जिन बितड़ा नाओ। सो तन गुरु सावास है हर देख नेहा हो वेख वेख गुरु विदसिया गुर सतगुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी। हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वल दाने हो सतगुर को सग मारिया गुर बचन समाने। तू ठाकर तू साहबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा माँ पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

देव कतेव उत्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताए, हक सच खालक खलक, म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहा मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

क्या करी, नामे के स्वामी जसवंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीची तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रफ्ती।

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पापसा सामने बरना। अशपति गजपति नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुरत समायण होय निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशन कामा रहाओ। ए मन इतिहास करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित सत्सर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जमपै हौसला ही।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चातर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल कल मैयल रव रहा सो।

सतगुरु प्रसाद। जोग ना संसार, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना संगी वाये, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहाओ। जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश भी संकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाय। सतगुरु पीते कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाय।

नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है। वाजे बाजो सुजी वाजे तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है। सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मई।

इन विध चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वनजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तिल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुखे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ियो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब दी, हर अस्थिर सेर सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रस मान, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर दंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीत है रंग, गुरपुख है हर रंग चालिया, फिर बौर ना होवी पंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुरपुख है हर उपदेशिया, हर के त्याराओ निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आमन जाना अंग, हर प्रभ चित ना आयो, मन दूजा पाओ सैलंग। हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुई महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करे बहु तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पायो सुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा दया विस्तावे, होमे दया प्यार सबद न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए,

गुर प्रसादी एको बूझे एक समाए समाए सूही महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए हर हर नाम पदार्थ पाई मेरे मन हर हर शांत बसाई कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर गुरु मिले सब दुख गवाई रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई हो हर प्रव प्यारा तू चुड़ाई सत संगत मिल हर रस पाई गुरमस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक सुख।

नानक हर रस हर रंग समावे सुही महला चौथा। जेवा हर रस रही अघाए गुरमुख पीवे सह समाए हर रस जन चाको जे पाई कौकत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस रासो उर्धार हर रस राते रंग मुरार मनमुख हर रस चाख्या ना जाए हों मैं करे बहुती मिले सजाए नदर करे ता हर रस पावे नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इत गाए। पतित जात उत्तम भय।

क्या तुझ पे आग सुनाइए बुरा पला तुझ सब छू जाए जिहा को करे तिहा को पाइए। मेरे साहेब तू अंतर की दिल जाने बुरा पला तुझ सब छू जाए तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानस भगत कराई इतना सतगुर मेल सुख देवे एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुझ सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नजर करे केहा को होवे बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने सब तुझनो नित त्याए जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर तिनके हो मैं रोग गए रहाओ। ब्रह्मा विष्ण मां दियो त्रै गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई जिन किए तिसे न चेते बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई। हो मैं रोग सब जगत व्यापिया

जिन शिष्य साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वे हर दिखते गुरमुख ब्रह्म विचारो। सुई महला चौथा कीता करना सर्व रजाई चित की चै जे कर सकी है अपना कीता किछु न होवे ज्यों हर पावे त्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किछ कर हम साके ज्यों पावे तिवें बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद शिष्ट सब साजी कोई सेवा करो जे किसीता होवे इक ना सतगुर मेल तू बुझावे इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वड्याई हों आख ना साका हों मूरख मुगद नी

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाई है, साथ लगे ताहों मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे तान है रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवा। तन स्वागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजै अभिमाने। तैस्यो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभु मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभु पावे, सास सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, दिनों करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा।

सगल सामग्री में कर की जोड़ी आस के आसी तिर को लोड़ी कौन कहा गुण कंत प्यारे सुगर स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत श्रीकाल पौ अंजन पाया अमृत नाम कंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे गुण कामन कर कंकरी जाया वस्त्र लीना गुरु परम चुकाया सबसे ऊंचा मंदिर मेरा सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज विछाई सर्द अपारा नवरंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रवताई खोज चरयो देखो प्रह जाई सुनत सदेश रो प्रह गृह तेज बिछाई परम परम आयो तो नदर न पाई किन विद हीरो तीर निमानो मिलता जन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती तिर सज्जा गंता पियो मधुरो तन मतवंता तन जागे जे तिर बोलंता कई निराशी बहुत दिन लागे देश दिसंतर में सगले चागे चिन रह न पावो बिन पग पागे होए कृपाल सब मिले सवागे पयो कृपाल सत्संग मिलाया बूजी सब तरह फिर पाया सगल सिगार हूं मुझे सुहाया कहो नानक गुरु परम चुकाया जय देखा तह तिर है पाई खोलो कपाट का मन है।

क्या सेव कमावो क्या कहरी जावो विद कित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन करते चरनारे पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को गिर।

कुचल कठोर कामी मुक्ति जय। दर्शन देख की वड्याई, तुम सुखदासे पुरख वाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोरंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कबू ना समझे अज्ञान गवारा। बोर बोर लपट्यो जंजारा रहाओ, बिके नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ, कहो ना।

जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पान ले लटकावे, परमे पूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मर।

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पाम मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सोहा।

कहें गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करें हर रंगा, कहें मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा कह दर्स पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबद सुनत सुख सारे, जा की तैल जमदूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभु के सेवक प्र...

कृपा निधान नानक कहो करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, तू ही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन परम परम परम हारे, ओट गही अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरे दिन रह नारे, सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई, जाको बिन सतबार न काई, ए सुखना सोत नहीं जाने।

चाखे सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करना धारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मान अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया किन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभु मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभु।

कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवा। गुर परमेश्वर करने हार, सगल सिष्ट पौधे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए। रहाओ पल जल डूबत सतगुर काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सूही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी। रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला। तू ही महला पंजवा। दर्शन देख जीवा।

कोट आवद किस वेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदार है, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुख।

मन तन प्राण जियो अर पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, प्रभ चरण कमल रिद महे निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो, रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे, लोभ मुआ तृष्णा।

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए। दोही सराय खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच सा।

साध संगत क्यों प्रीत बने आई, पूरब कर्म लिख तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साके तीने ताप, निमख न बिसरे हर चर।

आद गावें गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करें बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा दैती जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माद रे पाज दिन नित रहने।

परण पोखण संग औद बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साथ संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिन से। गुर पूरे मिल पाप सजायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याय। पूर्व लिप्त हुए ता पाई है, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संत रवाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा ते, राम रसायन अंदिन माते। वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे। हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा। करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संत रवाला। सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा और न कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग पर

इस दया न पाए, अनेक जन्म बीतने परमाई, कर वास न देवे दुतरमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दी जाए किरत पवाई, सुन साजन संत।

न आई। पद अभिमान सरनी परो हर गुण निद पाई, अवलोकन पुने पुने करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार, कितवो मन आशा करो जन का।

जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विध प्रिया पर को हिरिया दिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा देखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद पिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हौं सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। राव वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे दिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन केट्यो।

आहा निमुख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रकादी करिए रहाओ। को तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते छिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड ना कोई, भगता बने आई प्रभु अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्ष्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतंते पावे, जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पे निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगंते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय, तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा

अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू काची देह आनी कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बस निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही ते आये तेरी गत में तू है जाने कुदरत की न पाये निर्गुण मुग्ध अजान अगे।

शाही सच्चे से पीरा पे सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसा।

कुर्बान जाए उस वेला सुहावे, जित तुम रह द्वारे आया, नानक को प्रभ है कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सोही महला पंजवा, तुझ चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, दयाल होए जिस ऊपर करते, सो तुझ सदा त्याए, मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी, अरदास

ते संग पाई। अंतर की गत तुद पै सारे तुजेवड़ अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोर मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ पैर आरा दें, तेरी शरण तेरे

सच्चे सेती रतियां जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रते रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे सो चित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन ना है जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदत खाए ना पाहे जियो। गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े नैले चित कठोर जियो। तीन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बूझे अपना से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे चित तन कैसी दुख जियो। बाकी वाला तल भी है सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा खात रले मर जाए जियो। बहुरंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। किंचो तान विगुची है बुरा पला दोए नाल जियो। दिन सब दे पैर रत्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सत

ज्यों राखे कृपा तार तिवे सुख पाये। मैं अंदुले हर नाम लगती तोहनी, रहो साहिब की तेक नाम हो है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुरदे खा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवें रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आए कह, जन्म

आपे रहा समाए सो विस्माद कया। ऊना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हदूर।

सब वो सच सच सच वरते, गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते, गुरमुख आप पछाने। नाम से आए तो सब गुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए, नानक तिसदा सब कुछ होवे, जे विच्चों आप गवाए। सोही महला तीजा, काया कामन अब सुआल्यो, फिर वसै जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागन, गुरु का शब्द समाले, हर की भगत सदा रंग।

काया अंदर समकिच वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूजे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख जित्ता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ पगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाये, गुर के शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा, इह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाये, मोल कित ही नाम पाये, नाही नाम पाये गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या तो करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा।

नरके कोर पवन। ये मन जैसा सेवै तैसा होवै, तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु न जाए। मां पुरखा का बोलना होवै किते परखाए। ओए अमृत परे भरपूर है, ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवट पागी जे

मन मुख मन न पिजई आत्मैले चित कठोर सपै दूध पियाए अंदर विसने कोर आप करे किस आखिए आपके बख्शनहार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पये किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सूं लिव लाए हों मैं मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रंग गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमती सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुरु सेवन, अंकर नव निर्नाम है खान खर्चन नान खुटे। हर गुण सहज रवन ना ओए जन्मे ना मरे ना ओए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन, हो तिनके बलिहारण है मन हर गुण सदा रवन। रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाना मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित तट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला तिचर आपदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताए, कृपा करें तो सतगुर मिले हर हर नाम से आई। रहाओ जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देहे ताई ती राजा, दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया द्वार है, हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल, सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अराधी, जे मार कढ़े भी त्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई।
जे तुद वल रह ता कोई किहो आसो, तुद विसरे मर जाए। वार वार जाई गुरु ऊपर तै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कह ताई। चखड़ चांगी मीह वरसै पी गुर देखन जाई, समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाए। ज्यो धरती सोब करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होई सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई।

आई। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेव पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस दे वाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बच्चे ता गुर वड्याई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किच थाए न पाई। पाला तकर वर्फ वर्ष है, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभु रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

बिख्या कै संगा, मने व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कत पाये पूरन परमेश्वर रहा। मोह मगन मह रहा व्यापे, अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे,

जान ना पाईए प्रभ दरबारा, आसा अंदेसा बंद पराना, महल न पावे फिरत बेगाना, सगल ब्याज कै वस्तर दीना, फिरत प्यास जो जल बिन मीना, कछु सियानप उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल लहो नानक अरदासे।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनासा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां करनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कबू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूड़ कमावे तंग जियो। नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरै, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगे पैदा जाए जियो, ऐथे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम सन माल जियो। मन से कबो न विसरै, जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाये, ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा, अष्टपदियां

चूरमरों से वाडियां हौना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा फिर महिंजासरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मू दातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाव जुलाई पंध तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरथी वै कृपाल कितनी लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हू साहो हो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया चुप होरी नदर निहाल दे दर्श रंगवाणिया जय जिठे मन तीरिय किल विकवंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी तह पई मिलिया सह सुभाए पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया नाम निधान अपार पगता मन वसे जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे रहाओ। मोह बाद अंकार सर पर लुनिया सुख न पाए मूल नाम विछुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंदिया नरक सुरक अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सो तत विचारिया नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला कुछ जी इक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हौ क्यों सो रावण जाओ जियो इक दू इक चरण दिया कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हौ कह जी दोस्त रे ओ जियो। क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो इकत तोल नाम बड़ा हौ सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हौ इनी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो। अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगुणा इक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो। पाने तख्त वडाइया पाने पीप उदास जियो पाने थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश।

गुणवंती। जो दी सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाव जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा, न लगे तत्ती वाव जियो। हों आपको बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाव जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया फसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त अघाए जियो। जो गुरु दी सह सिकड़ा, तिस निव निव

वर कर दर दर्शन नहीं जाता, फिर का सह न पाया। सतगुरु पूछ न मार्ग चाली, सूती रहन विहानी, नानक बालकन रणे पा, बिन फिर तन कुमलानी।

त्रिभुवन कंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वेसे नानक में वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहुरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपया करते कर पाया नेक न सके कोई जान जी ना नरहने केवल रव रहा त्यो लोई माया निराशी रोए विचुन्नी बाली बाले हेते नानक साथ सब सुख मैली गुर चरणी प्रभ जेते बाबुल दुपड़ी दूर ना आवे कर कई है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक बिछड़ना दुख पाए गुरमत पंख समाए राग सुही मेला पहला संत कर दूजा।

आया साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अंजन मेल कया मन मानिया कर्म अंदर सोहाए पंच शरत अंधद वाजे हम कर साजने आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य सब सवारे ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मंथन अमृत इन्ना अंतर प्रेम रतन्ना

परम तत्व विचारो। जंत ते तू सफल्यो दाता सिर सिर देवनहारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना। सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा।

रंग रासे अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरुष विदाते तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आशा मनसा पूरी राम फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसदी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपूरे सत्पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलोआ सिर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद सबद अगा जा राम सबद विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

प्रसाद राग सुई छंत महला पहला हर चौथा जिनकी आपिन देखिया जग पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोग सेती पंच शब्दी आया जिनकी आतिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सू गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सू से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गहर है सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वे वासला कड़वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखी है होर करे न कोई आखनता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाद कहे है दान सन मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई आप करे

मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई, गुर की पौड़ी सास की साचा सुख होई। सुख सहज आवे सास पावे सास की मत क्यों टले, स्नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले। परपंच मोह विकार साके कूड़ कपट न दोई, मेरा मन रा

कौन अफेवे कंस मंस पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूजै गुर सबदी सच जानिया साजन होवन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करे रलिया करम करम सबाया अठहठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंगा आगू जेती है क्यों पादर जाने आप सहमत होछी है क्यों राह पिछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली विन नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूडो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मंत्र देसी जेठी है सब देश पराए। गुरमहली कर अपने सो पर कुर लीना, सेवक सेवा तो करे सत सबद पटीना।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न पुले। जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिटो, जिन कारे सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कैसो जन पाई, सुख सोहिलड़ा हर त्यावो। सुन हर गुण पीने सह सुभाए,

सबना का हो तेरा तू हमारा जुग में राम नाम निस्तारा साजन आए उठे कर माही हर गुण गावे तृप्त अभाई हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख न लागे आए दे जिस पूज हो वह हर जन की जो हर हर नाम से आए नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजन आए उठे कर माही एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा भगत जना की हर जियो राख है जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख हो वह हों मैं सब जलाया राम हों मैं सब जलाया मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी सच्ची भगत करें दिन राती गुरमुख आख लखाणी।

भगता की जात सत है, भगत हर कह नाम समाने राम। हर भगत करे विचों आप गवावे, जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने, पै भगत मीठी लागी। हम दिन भगत करे दिन राती, कर ही मैं बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखे सदा नाले। नानक से भगत हर कह दर साचे, हम दिन नाम संभाले। मन मुख भगत करे बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होई राम। हों में माया रोग व्यापे, मर जन में दुख होई राम। मर जन में दुख होई दूजे पाए परज भी गोई, बिन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नाम सच सोई। नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पथ खोई।

जो बोलै जो सच करे सो होई, जै देखा तै सच पसरिया और न दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावे, मर जन में दूजा होई, नानक सब कुछ आपे करता आप करावे सोई।

में सुख होई। सतगुर सेव कन बालड़िए हर वर पावे सोई राम, सदा होवे सुहागनी फिर मैला वेश ना होई राम। फिर मैला वेश ना होई गुरमुख बूझे कोई, होमे मार पछाणिया करणी कार समावे सबद समावे अंतर एक को जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची शोभा होई, नाम कामन फिर रावे अपना रव रहा प्रभ सोई। गुर की कार करे तन बालड़िए हर वर दे मिलाए राम, हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वर कै सब थाई, सच्चा शिगार करे दिन राती कामन सच समाए। हर सुखदाता सबद पछाता।

प्रभ आप मिलाई राम गुरमती कर चानन हुआ प्रभ रव रहा सब थाई राम प्रभ रव रहा सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया से सुखाली मेरे प्रभ पानी सत सिदार बनाया कामन निर्मल हो मैं मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते हैं नाम नवैनित पाई सूही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम अंजिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कार्य आए हर गुण गावो नारी अंजिन पंत करे गुर आगे साखन कंत प्यारी गुरु का शब्द वस्या कट अंतर से जन शब्द सुहाए नाम तिन कर सभी सोहिला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिव लाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी

नाम संभाले। गुरु सबदे राता सहजे माता नाम मन वसाए, नानक तिन करे सद ही सोहिला जे सतगुरु सेख समाए। बिन सतगुरु जग परम कुलाया, हर का महल न पाया राम। गुरुमुखे एक मेल मिलाया, तिनके दुख गवाया राम। तिनके दुख गवाया जा हर मन पाया, सदा गावे रंग राते। हर के पगत सदा जन निर्मल, जुग जुग सद ही जाते। साची पगत करे दर जापे, कर दर सच्चा सोई। नाम सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी, सब दे ही सुख होई। सुही महला तीजा जे लोड़े वर बालड़िए, ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए, गुर के सह सुभाए। सापन कंठ प्यारी, सच संजम सदा है निर्मल, गुर के सब सिदारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, जिन आप

दूर वसै, इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अनद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

आया, हो मैं रोग गया पौ पावा, सहजे सहज मिलाया। काया सेज गुर सब सुखाली, ज्ञान तत कर पोगो, अंजन सुखमानी नित रलिया, नानक तुर संजोगो। सब संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई, आया बलराम जियो। संत जना कर मेल गुरु बाणी गावाया, बलराम जियो। बाणी गुर गाई परम गत पाई, पंच

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूर विहाजे, कूर लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ कदे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। कर्म दृढ़ो हर नाम के आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

पूजा। गुरुमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सह सुभाए, अंजन भोग भोगे सुख सोवे, सब ग्रह लिवलाए, वड्डे पाग गुरपूरा पाइए, अंजन नाम से आए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए, संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए, पै पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई परम पागा, हो मैं बिंठी पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हो आवासा।

मन दह दिस चल चल परमिया, मन मुख परम कुल आया, नित आसा मन चितवे, मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम।

सेव ठाकुर नाथ पराणा, सुन बावरे जो आया किस जाना, ने चल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एह मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

जल थल मैयल पूरन स्वामी कट कट रहा समाया जिस ते उपजिया तिस माए समाया कीमत कहन न जाए जिसके चलत न

आवन लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे, पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे, परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी, सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनहत शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे, रहस उपजे मन

वरदाना कर मेरा मत साईं कृपा की जय सौ मत दी जय हाथ पैर तुत्याई गर्भ ना की जय रेण होवी जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम फिर हम बोरिया राम तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आपन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे

तू करवत मेरा ओला राम है बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सो मन माना प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना कई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पोत सतगुरु मेरा पूरा तिस दिन अगर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा।

दूरे, ताकि शरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभु को बलिहारे, नानक सद कुर्बाना। ऐसा गुरु वड पागी पाए, जित मिले प्रभु जापे राम, जन्म जन्म के किलविक उतरे, हर संत तूरी नित नापे राम, हर तूरी न आई है प्रभु ते आई है, बाहर जोन न आई है, गुरु चरणी लागे प्रम को पागे, मन सिंधिया फल पाई, हर गुण नित गाए नाम ते आए, फिर सोग नाही संतापे, नानक सो प्रभु जी का दाता, पूरा जिस पर तापे, हर हरे हर गुण निदे, हर संतन के वस आए राम, संत चरण गुरु सेवा लागे, तिन्नी परम पद पाए राम, परम पद पाया आप मिटाया, हर पूरन कृपा सारी, सकल जन्म हुआ पो पागा, हर पेटिया एक मुरारी, जिसका सा तिन ही मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिए, मिल सतगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो, पुन्नी इच सदाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती, मरे ना आवे जाई राम, अविनाशी पाया नाम ते आया, सगल मनोरथ पाए, सांस सहज आनंद कनेरे, गुरु चरणी मन लाए, पूर रहा कट कट अविनाशी, थान थन कर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे, गुरु चरणी मन लाए, सूही महला पंजवा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखें दर्श तेरा राम, लाख जेवा देहो मेरे प्यारे, मुख हर आराधे मेरा राम, हर आराधे जन पंख सादे, दुख न व्यापे कोई, जल कल मैयल पूरन स्वामी, जत देखा तत सोई, परम मोह विकार नाठे, प्रभ नेर हूते नेरा, नानक को प्रभ कृपा कीजे, नेत्र देखे दर्श तेरा, कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम, सो सुन ए मन निर्मल होवे, कटिए काल की फांसी राम, कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी, सगल मंगल सो क्याना, हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सहस्याना, कलमल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा कीजे, हर गुण सुनिए अविनाशी, करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे, चरण चले प्रभ मार्ग राम, पाव सागर नाम हर सेवा, जो चढ़े तिस पार्ग राम, पाव जल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे, महाविकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे, मन बांचत फल पाए, सगले कुदरत कीम अपारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजे, मन सदा चले तेरे मार्ग, एहो वर एहा वड्याई, एहो तन होए वडपागा राम, एहो रंग एहो रस होगा, हर चरणे मन लागा राम, मन लागा चरणे प्रभ की शरणे, करण पारम गोपाला, सब किस तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला, मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा, सुही महला पंजवा, हर जपे हर मंदर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप सजावे राम, हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी, सहज कथा प्रभ की अति मीठी, कथी अकथ कहानी, पला संजोग मूरत पल साचा, अब चल नींव रखाई, जन नानक प्रभु कहे दयाला, सर्व कला गण्याई, आनंदा वजह नितवाजे, कार ब्रह्म मन उठा राम, गुरुमुखे सच करने सारी, बिन से प्रम पैच उठा राम, अनहद बाणी गुरुमुख बखानी, जस सुन सुन मंकन हरिया, सर्व सुखा तिस ही बने आए, जो प्रभु अपना करया, कर मैं नवनिध परे पंडारा,
राम नाम रंग लागा, नानक जन प्रभु कदे न विसरे, पूरन जाके भागा। छाया प्रभु छत्रपत कीनी, सगली तपत विनाशी राम, दुख पाप का डेरा काठा, कारज आया राशी राम। हर प्रभु फुरमाया मिटी बलाया, साच करम पुन फलिया, सो प्रभु अपना सदा त्याई है, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल में यल सोई, जन नानक प्रभु की शरण आई, तिस बिन अवर न कोई। मेरा कर बनिया बनपाल बनिया, प्रभु पर से हर लाया राम। मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाया, गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजियां वादाया। करी नदर स्वामी सुखेंगामी, हल पल सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपिए, जियो पिंड जिन तारिया। सुही मैला पंजवा, पै सागरो पै सागर तरिया, हर हर नाम त्याए राम। बोथड़ा हर चरण आराधे, मिल सतगुर पार लगाए राम। गुर शब्दी करिए बहुत न मरिए, चूके आवन जाना, जो किछ करे सोई पल मानो, तामन सह समान। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे, सुख सागर सरणी पाए। हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम। आत्मड़ा मन आगे तरिया, सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदिर थित पाई। अनग विनोद सिमरो प्रभु साचा, बिछड़ कब होना जाय। सावर कागण सदा सुहागण, राम नाम गुण चीने। कहो नानक रहे रंग राते, प्रेम महारस पीने। अनग विनोद कहे नित सखिए, मंगल सदा हमारे राम। आप न रहे प्रभु आप सिगारी, सो बावंती नारे राम। सह सुभाए पै कृपाला, गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारे। कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो, सगल मनोरथ पाए राम। सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रविया, सर्व मंडल छाया। ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। एक दर्शन नानक बिकसे, आप ले मिलाए। सुही मैला पंजवा, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप बसाया राम। करते आप बसाया सर्व सुख पाया, उत्पाई सिख बिगाते। गुण गावे पूरन परमेश्वर, कारज आया रासे। प्रभु आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन एओ थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम आराधे, कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभु अविनाशी, हर हर नाम ते आए। सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द प्रभु नासी। सबत सवारे सदगुरु पूरे, नानक सदगल जासी। बात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा, सो प्रभु कहा दयाला। जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभु आपे कर प्रतिपाला। जय दिस पूर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई। कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान त्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज भगत पर पंजन, अनहद वाजे तुनिए राम।
عن

लाथे सगर विसूरे पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणे गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध दीने करते तोत ना आवै काई राम खास खर्चक दिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठ नाथे दुख न नेड़े आया। शांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम गुण गाए गोविंद अमद उपजे साथ संगत संग बनी जिन उद्दम की आकाल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अखर तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अंदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पी जय बिनंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे पतित पावन हर बिरद सदाए एक किल नहीं पन्ने काले खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग छारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई चरण कमल जब सागर तरया पव जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कहया जी।

बार राग दोष से न्यारो नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

वह जाए कर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सू है वेश बुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वदिया रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सब सदा समाल नानक जन्म सवार है आपने।

कौड़ी आपे तक प्रचायन आकाश पताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपायदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभायदा तेरा हुक्म निराला आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसने माए समाए मैला तेजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं।

जिन दुर्मत दूजा पाओ, छिन में टूट सब विनस जाए, जो टिके ना बिरकी छाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीत सचड़ाओ, उल्टी सकत स्वै कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर आपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है, कंत ना पाया जाए, इस लहदे बिलम न हो गई, रंग बैठी दूजे भाए। मुंड ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए, सब सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए। नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई, तिसदा अंत न जा पई, गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई, मन मुख ठौर न पाईनी फिर आवे जाए। जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहै वेश पावन कुलखणी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार। ओस सील न संजम सदा झूठ बोले, मन कर्म खुआर। जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार। सूहा वेश सब उतार तरे, दल पहरे खिमे सिगार। पेये सहरे बहु सौदा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसे दी ना रले, जिस रावे सिर जनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी, दिन तागे गलहार। सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विधान, पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान। आवे जाए पुआये मनमुख अज्ञान, इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजान

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंडक मारिया लग पे गवारी जिनकी तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजे तंत न आयो एवे पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग सिउ होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप छड़ो वे आप कर आप पीने आप आहो गुरुमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मन मन खत्म धराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुढ़े थी मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म मरण का दुख गया फिर पवे न फिर नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला नानक एवपन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े तित निबंधे ताल। महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही किती लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो कृप सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सलग निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे तन चोर इक पौ लखी नात्या दो पा चढ़िए सहोर बहर धोती तू मुड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अननात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएदा जग तंदे लाया इक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दै जिस ए मन पाऊंदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकिए जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला दोए जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जारे खुले हट हुआ पार जो पहुंचे सो चलन हार परम दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रमाण कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई। महला पहला राती होवन कालिया सुपेदा सेवन देव बग्गा पतै कना कालिया कालेवन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान। पौड़ी
काया कोट रचाया हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुआयन हों मैं विच व्यापे इह मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संकापे जिस आप दूजा ऐसो बुझसी जिस सतगुर खापे सब जग खेल रचायन सब वर्ते आपे श्लोक महला पहला चोरा जाड़ा रंडिया कुटनिया दीवान वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान सिफ्ती सार ना जाननी सदा बसे शैतान गधो चंदन खौलिए पीसाहू स्यों पान नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान कूड़ा कट्टर कछिए कूड़ा पैनन मान महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटों कुर्बान पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया हों मैं चगड़ा पायोन चगड़े जग मोया गुरमुख चगड़ चुकायोन इको रव रहा सब आत्म राम पछाणिया पौ जल तर गया जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया श्लोक महला पहला सतगुर पीछिया देह मैं तू समरथ दार हों मैं गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार एनस नव तन निर्मला मैला कबू न होए नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए मैला पहला इको कंत सवाईया जिती दर खड़िया नानक कंत रतिया पुछे बातड़िया मैला पहला सबे कंत रतिया मैं दुहागन कित मैं तन अवगुण एतड़े खसम न फेरे चित मैला पहला हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात सब राती सोहागनी इक मैं दुहागन रात तौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति जोत पर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग में वर्त आप हर सेती प्रीत कर।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कार लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर कै सब सलाइए।

पहला दूजा जास पासे रावे हो दुख भी संभाले नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंक सखाई जो तेरी शरणागती तिन लह छड़ाई नानक वे परवाओ है तिस तिलना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इको अंकार सतगुरु प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न ना कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख करके कुटंब जीवाया मरती बार एक सर दुख पाया कंठ गहन तब करण पुकारा कह कबीर आगे ते ना समारा सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रहन गई मत दिन भी जाए पर गए बग बैठे आए रहाओ काचे करवे रह न पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रलिया माने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तय खटिया कहाँ गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगह का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जाको हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया पया कराया कहो कबीर तेई नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाथ दी सब मत थाकी एक ना खाक समाया बावरे ते ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहा तब लग प्राणी तिसे सरे हो जब लग कट में साता जे कट जाए ता पाओ न जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तिन्हो लिया उबारी रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बचन ना देही डोरी पूरी माँ पैना ही बोगस काला ले ही बेहतर कर एक पुरुष समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजमना काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका ना हूँ विवेको राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको अंकार सतगुरु प्रसाद सह की सार सुहागन जाने आज अभिमान सुख रलिया माने
तन मन दे ना अंतर राखे, अगरा देख ना सुने अपाखे, सोखत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई रहो। दुखी दुहागन दोए पखीनी, जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी, पुरसलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गवन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी सोही। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया पनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सदै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

उस पैसा की मैं सार न जानी, जो गुण कोय पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विद्धन कुही मुंड अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा सा मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बोतीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जा।

ਪਹਿਲਾ ਚੌਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਵਡਾਈ।

पथ में रहो रजाई रहाओ। जो किछ हुआ सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई, तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चितराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुझ पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हो बेगाना, औका स्तन पाई, भगत हीन नान।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन और न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे, जी जन से सब सैन तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे, जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे पान, तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलख अधेओ रहाओ, माया मोह तरकटी नार, ऊंडी कामन कामन यार, राज रूप चूठा दिन चार, नाम मिले चामन अंधियार, चक छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना होए, एक एक को ना ही सौ कोए, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन से माया, ठाक रहे मन खाते कारया, अवर न सूजे गुर को वारया, नानक नाम रते निस्तारया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख करम खुले बौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जियोरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई, रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली, सास दिलास जतो अपने हर पाली, सब बैराजन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली, अटक कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करने क्या कार कमाए, हों में लेट चले गुर शब्द समाए, मन मुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा, हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग छाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहत स्यों, जित हुन खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा पाओ न गई लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तें दुख निवारे, रहाओ तू दयाल दयापत दाता, क्या ए जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते हुए, ऐसा आँख बखाने, गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले, तिनकी गहन गत कही न जाई, सत्य आप सवारे, परम कुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार न पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले, हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल्य क्यों तोले आ जाए, दूजा होए तो सो जी पाए, किसते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए, गुर प्रसाद वसे मन आए, ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराफ कसवटी लाए, आपे परके आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए, माया का रूप सब चिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा लेता सच समाए, आपे लिव पात है आपे, आप बुझाए आपे जाते, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा,
साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या होता है बहाना। ऐसा एक तेरा खेल बनया है सब में एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुर पाए, अंदिन लागे सहत्याना। रहा क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना। जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है, जो हर पावे पगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा। इकना कर मैं देवड़े आई, इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा थाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना। इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना। ए बाणी जो जियो जाने, इस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चौह जुगा का हुन वेड़ा, नर मनुखानो एक निधाना। जत संजम तीरथ ओना, जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा। जुग जुग आपको अपना कर्म है।

कै सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हों तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाए हर गुण गावे सह सुवाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए। हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए। निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए। यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर सबद मिटिया ज्ञान मेरा सदगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत ना फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हों मैं माया सब जलाई दर फाते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनद होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसार वेख है बहु न मरे ना जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सब ही लागा सह ज्ञान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई। जय देखा तैरिया समाये सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का शब्द तक मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इक्को अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती क्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुर पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। जो प्रहला धरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित तवन्ना। ओ तोवे तोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पव कारण हम पापी राख कपना। हर दासन दास दास हम करियो जन मानक दास दसन्ना। बिलावल मैला चौथा। हम मूरख मुगद अज्ञान मती शरणागत पुरुष अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नामे रामा गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जति है वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सम्मा। कोई फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड कर्मा। गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुबत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सकते हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे ज्यो संग पासत लोह तरा। साकत नर होची मत मदन जिन हर हर सेव न करा।
ते नर पाघीन दोचारी कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मेला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम दोहित है कल युग खेवट गुर शब्द करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिप्त लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाई है उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे, हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार दम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नी। अपना पला सब कोई बाँच है, सो करे जे मेरा चित नाच तैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। अन दिन हर हर नाम त्यागो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे तुम्हें बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरुखोत्तम, अन दिन अनद आनंदे। तरम राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदिक, विच माया फिरें फिरंदे। कृष्णा जलत किर्त के बादे, ज्यो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते, जो राखे तिवे रहंदे। ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम, पतित पावनो, हर संत पगत पारनो।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुरु टेकया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक के सगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे किस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार, रहाओ पवन चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से, हर शोक से रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड माया सर्व पुयंगा, हूं मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहां होए कृपाल संग गुरु मिलावे, हूं फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर किसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख सही निहाल, जिन चाखिया किस आया साध, जो गूंगा मन में विस्माद, अनग रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प वेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम से आए, रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगा जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने मूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे, पार ब्रह्म प्रभ तय रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रपाले, बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोय अनाथ तूरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोय निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभु चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै सं सदा प्रभ दसे, प्रभु का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभु चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम अवतार, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन सन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कह कर गावना, इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान का बिरथियां प्यारे, राग सुन को तुम एक, रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला कर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता, सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नाम की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा, वड पागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिना वासो,

अमृत नाम अराध्य निर्मल मने होए प्रगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने, सिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप नेरे, पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पार उतारे, नाम सुबास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहार है। बिलावल मैला कन्या दिखे बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी ना होत जियो, मान महक ना सकती पाई सादा दासी कियो, नाम से दशोभा बनते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदोरी चित क्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया, रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया, तन तन हर साधन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया, जाय बसोवड पागणी सखिए संता संग समाये, कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाये, कहे जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरनी पाये, प्रेम बिचो न मोह व्यापे नानक हर एक ते आये, दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतले सह सुहाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए, सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए, नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा, एक को उदार सतगुरु प्रसाद, एक रूप सगलो पासारा आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब जप जाइए तप दिश पाए, रहा अनेक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना, रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अचल ना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही कट कट आप लिखना, आपे अवगत आप संरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम।

बंधन काट मुकुट बुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आत्म दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बाँ पकड़ सतगुर निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संको के प्रभ दर्शन पाया, कहो नाम सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया।

ना रहाओ। अंधकूप से परगह लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना। नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना। मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पै परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता। चरण कमल सो लाई है चीता, हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत। जल न बुझे हर हर गुण गावत रहाओ। सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी। मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा सब कर मैं आया रहाओ। भगत वचल पै का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दूख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ। एकस बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई। कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान सब तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या, हर रस छोड़ बिखिया फल चाख्या। पज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े। तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ। तन मन तन अपना कर थापिया, कर्म हार एक निमक न जापिया। महा मोह अंधकूप परया, पार ब्रह्म माया कटल बिसरिया। वड्डे पाग सब कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय। सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाकी बाणी। अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ। सगल संजाम करे प्रभ आपे, ऐ मनोरथ सो प्रभ जापे। हर चरम काम मोका दाता, पूरी तई सिमर सिमर विदाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरियाणिया। बिलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, नर कुआर साकत नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चक मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचे कनेरे, निरपट फाक दले सिर पैरे। कहो नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा दो पदे।

पवन सो मत जित प्रीतम पाव रहाओ, ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना पाहु बेरे। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनों।

रहाओ अपत तथा अमृत प्रभानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बिलावल मैला समझवा सांत पाई गुरु सतगुरु पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ पाप पाप संताप बिनासे हर सिमरत किल विक्षवना से अनंत करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पै सवारी बिलावल महला पंजवा ममता मोह त्रो मद माता बंधन बाध्या अत बिकराल दिन दिन छिजत बिकार करत औद फाही फाफा जम कह जाल तेरी शरण प्रभु दीन दयाला महा बिकम सागर अत पारी उधरो साधु संग रवाला रहाओ प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल कम के बंधन काटो परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल बिलावल महला पंजवा सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया सात जना होए कृपाला दिक्षे सब परवारया कारज सतगुरु आप सवारया वड्डी आरजा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण विचारया रहा वन तृण त्रिभुवन हरिया होए सगले जी सधारया मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छ पुजारया बिलावल महला पंजवा जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत का तैसो काल रहा साथ संग पजिया गोपाल गुण गावत तू तै जंजाल आपे सतगुरु आपे प्रपाल नानक जाचे सादरवाल बिलावल महला पंजवा मन में संचो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुणगान ऐसी प्रीत करो मन मेरे आस पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल काग हर चरनी ताका मन लाग बिलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माह त्याई नानक गुरु पूरे शरणाई जिन अपने नाम की पैज रखाई बिलावल महला पंजवा सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करतार नानक दास ता की शरणाई जाको शब्द अखंड अपार बिलावल महला पंजवा ताप संताप सग ले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहा सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुण गावो नित राम के ए अवसर जोग आए बसो कर देश में ए तले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे लह गए बियोग बिलावल महला पंजवा काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल राव अहं बुद्ध को बिन समा ए पुर की टाल बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल बिलावल महला पंजवा सहज समाज आनंद सुख पूरे गुरु दीन सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ जय जयकार जगत में लोचे सब जिया सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु कस बिघन न थिया जांका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास राग बिलावल महला पंजवा कर पंजवा चौक दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू कर बार बिन सत बार न ला गई ज्यो कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए कर बार रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार।

नीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुरु सेविया से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तेज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभु जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अत कनी ते जियो हम आगो, अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो, हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ पागा, मैला कदे न हो गई न लागे दागा। प्रभु पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया न जाए। रहा जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्द तेरा पार जम गुण लि तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी शरण प्रभु मोहि कृपा धारे, सेवा कछु न जानो नीच मूर्ख हारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त किनारे, लाज परे तेरे दान से नह चित कस मारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव का तिनहारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगध उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय, जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाय। कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हम। रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा। नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता। सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, मृत हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अकागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भुजीता,

तीनों आपनों किस अभय दान दीता। सिंह बिलाई हो गयो त्रिण मेर दिखीता, श्रम करते दम आड को ते गणित नेता। कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर श्रीता। बिलावल महला।

प्रताप तुम्हारा देख है जम दूत छड़ जाए। तुमरी कृपा से छूटी है बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड़।

मत फूलो मानस जनमाया परमाया। नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मने ते।

मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच क्रम सो रचो कज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी ए हे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक एक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करण हार जो कर रहा साई वडे आई, गुर पूरे उपदेशिया सुख समर जाए। चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते पई शांत पर सत पाप ना थे, अंध कूप में गलत थे पादे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध के पूरन आस।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतह सद सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल पोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई तरह जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो आ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहा औषध हर का नाम है जित रोग न जाते, साध संग मन तन हित है फिर दुख न जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकी दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

अनुसार मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुजी ममता गई नाथे तय परमा सुख पाई आनंद भया।

रहाओ सोवत हर जप जा गया तोथिया बिस्माद की अमृत तृप्तास्या ताका अचरज स्वाद आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया, तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा हर का पैथर तो छुट है, जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत, तिस्यों तेरा खेद दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सर्व सो अपना प्रभु जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे, सब के मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अतना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया, कुन सुख में पाया सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवतिया अथवा मोया।

करता करे काम को काटे, कीवी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हमसे कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल में अला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना पला बसिया प्रभ संग रहाओ। बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर। सो अंतर

और उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापिया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय किस बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे,

तो कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे जम कंकर नेड़ ना आवे, गुरसिख प्यारे रहाओ। करण कारण समरथ है किस बिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग, ताके बहुत ना पाओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास, चरण कमल का आसरा प्रभु प्रभु गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कर सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाय सब पला।

कीन, जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन। रहाओ पूर रहो सर्वत्र में प्रभु गुणी गहीर, नानक भगत आनंद में।

हार तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या दे अपनी हास रहाओ जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बिलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव जय जयकार जगत में सफल जाती सेव ऊंच अपार अगणक हर सब जी जिस हाथ नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ बिलावल महला पंजवा गुरपुरा आराध्या होए कृपाल मार्ग संत बताए।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नान प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, पौ नाथा प्रभ मिट गया रविया नित राम, सात जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

अरदास जाने तुम अंतर जामी, खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताती बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई, राम नाम औखद दिया एक।

थाकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताए अभय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अभय अभय गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख कंजन मोहि चरण हृदय बसाए। सब तले तले सब ऊपर तेरे दृष्ट दृष्ट आए अभिमान खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुरु मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिए भगत वचन कृपाए जो जो शरण पर्यो गुरु।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन सजय चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेत नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग प्राणी।

कर कृपा अपने प्रभु की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध स्तंभ के जात त्रिपद अघाए पेट प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तै बिलसे कहु नानक ठाकुर प्रताप बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सब गुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वढाई मगन पे उहां संग माचे ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूर्ण, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंश ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर कामना आवत है, जासु राच माच कुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंगर साज सवारे हो, पावक तने जरावत है, ऐसे गर में ऐठ ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर खाडे, केस दहे से रावत है, दृष्ट ना आवे अंग अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रेम मुख लागो जो वडकागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग।

गोविंद गोविंद मई। जब ते पेटे साध दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते होए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुच संतन ते ए मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण न साके एक रोमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्यान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहें सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक केतले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, तो किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, तंद बंद हर सगल जंजारो। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, देखियो मोहन सब कै संगे। पूर्ण न काहू सगल परी, पूरन पूर रहो कृपा निद। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे। किस आ गए क्या कह

दुख परिया आठ पैर चितव नहीं पहुंचा बुरा चितव चितवित मरिया। निंदक प्रभु पुलाया काल नेर आया हर जन स्यों बाद उठरिया नानका राखा आप प्रभु स्वामी क्या मानस बपरे करिया। बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे पूल परे करें करावे मुकर पावे देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिख्या में लपटाए करे। अंधकूप में परयो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभु हो दयारा गुर पेटे काडे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गुर दीना रहा त्यानप ते सब पैस्यानप प्रभ मेरा दाना बीना हाथ दे राखे अपने को काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर पारोसे कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख ले अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहा निवरे दूत दुष्ट बैराई गुर पूरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा प्रभु मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया।

महला पंजवा सदा सदा जति है प्रभ नाम जरा मरा कछ दुख न व्यापे आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पाय हो निधान जन्म मरण की कटिय फांसी साकी दर्गे का निशान जो तुम करो

पूरा पेट्यो बढ़ पागी अंतरजामी सुगर सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ सम्राट ने मान्या को मान प्रम पै दिन गए

पूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुटे पै जम के कट कट एक रहा पर पूरे नाम शरण पर्यो दुख पंजन अंतर बाहर के खजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कभू ना हो वो दृष्ट अगोचर जी के संग बसे।

प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जाते नानक प्रीत लाई प्रवापे। बिलावल महला पंजवा पन पन जोबन चलत गया राम नाम का पदन ना कीनो परत विकार निष्फोर पया रहा अनेक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया।

कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक मेरे।

पंजवा आगे पाछे कुशल पया गुर पूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नी माया रहा मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज अनंत गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर की।

नहीं आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बिलावल मैला पंजवा दुख दे करनावा इत ओंकार सतगुरु प्रसाद आपने मेरे

अनक भगत अनक जन तारे सुमरहे अनक मुनि अंगले टिक निरकन तन पायो प्रभु नानक अनक।

उलझियो अलमकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे एक है हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस कूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जान।

है। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही राव, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म काहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

सब कोई कत कत बात करे दुख होई, कत सहने ते रहे न कोई, दिन रस राते मुक्त न होई, ज्ञान ध्यान सब गुरते होई, साची रहत साचा मन सोई, मन मुख कथनी है पर रहत न होई, नामो पूले थाओ न कोई, मन माया बंदे हो सरजाल, कट कट

नानक कहे अवर नहीं कोए। बिलावल मेला पहला मन का कहे आ मन सा करे एहो मन पुन पाप कुचरे माया मद माके तृप्त ना आवे तृप्त मुक्त मन

नाटशाला नाम विसार माया मद किया बिन गुरु भगत नाही सुख थिया सूकर स्वान गर्दव मंजारा पशु मलेच नीच चंडाला गुर के मोह फेरे तिन जोन पवाये बंधन बांधिया आये जाए।

फल किसका तन मन अर्पै है एहो जिसका ना ओ आवे ना ओ जाए नानक साचे साच समाए। बिलावल मेला की जा अष्टपदी कर दसवां।

आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपे।

सब चंदन होइया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अभिमान विछड़ दूर गईया। हर गत मित करता आपे जाने, सब विद हर हर आप बिनैया, जिस सतगुरु के

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कह

अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया।

मन मांगे रिद सिद चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद पैया अंडज जेरज सेत जुत पुज

औजात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई, भगत वचन अंगीकार करैया, नानक शरण।

नैया सतगुरु दया करे प्रभ मेले मैं कुछ आ गए सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मन तन इक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया वैदक नाटके देख पुलाने मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया हौ खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम जो बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हौ किस बुटों बल बल कुम गैया

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभ आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ के कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर

टोटा खाए, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पखंड कीने मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तर्क आकाश किए बैसन को थाओ।

पंचभूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला इक परम भूखे मोह प्यासे इक रस चाखे सब तृप्ता से इक रंग राते इक मरतूर इक डर कर साच।

तिस में मनुआ रेहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

डागर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौदस चौथे थावे ले पावे, राजस तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुभाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर सेवे सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वर्ते अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर

किसनो मार न का कह कोए, जिसदा साहेब डाडा होए किसनो मार न का कह कोए, साहेब की सेवक रह शरण आई, आपे बख्शे देवड़े आई, किस्ते

मुंड नवेलड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब फिगारिया, कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकथ कथिए सहज प्रभु गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूति राम, गुर के पाए चलो साथ संगूति राम, तन साथ संगूति हर संगसूति, संग सखी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट रव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हों मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। बिलावल मेला पहला, मैं मन चाऊ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब जत्तो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे। पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया। मैं नाम हर का हार कंठे साज शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्बाणी को बिरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उधारिया। महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार बीजय शब्द सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं पान तकिया तेरो साथ सूचा सदा नानक, गुर शब्द चगर निगेरो। संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम, मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम, जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम, हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम, भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम, बिन हर नाम ना जींदे ज्यो जल बिन नीना राम, सफल जन्म हर पाया नानक प्रभु कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक। हर प्रभु सज्जन लोड़ लो मन वसै वड भाग, गुर पूरे वेखा लिया नानक हर लिवलाग संत। मेरा हर प्रभु रावण आया हो मैं बिच्चा जे राम, गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम, अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम, जन नानक हर प्रभु पाया पूरे वड पागे राम, हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम, गुर पूरे प्रभु पाया हर हर लिव लाई राम, अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगट आई राम, जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम, अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम, गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम, जन नानक नाम विदसिया हर हर लिव लाई राम, हम मूर्ख मुर्द मिलाया हर कृपा तारी राम, तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम, जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम, जन नानक नाम।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिए मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाए।

नाम सब रस को गो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभु कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभु कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे दिन स्रे उमाहा तह रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिन वंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पलक थगौरी पाए मोह है अंत कथु न ताए बिन वंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साथी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोक जनाया मलन मोह विकार नाके दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पही निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

सखी आओ सखी वक आओ सखी अखी तिरका मंगल गावे तज मान सखी तज मान सखी मत अपने प्री संपावे तज मान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगले दुर्फ दिखंडनो हुए दास दासी तब उदासी बहुत विधि न

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जोनी।

मोहि तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है, मुख पर है हरे प्यास मेरी। जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए, सब में मिल हमारी हुए गते। कीत चित वो मित अंधारे, जो आख चतवी दिन चरे।

नानक पयम तै प्रिय संग मेले मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा, सोहे बंक द्वार सगला बनहरा। हर हरा स्वामी सुखे गामी, अनद मंगल रसना, नवल नव तन नाव।

सुंदर छाप दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तट लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गई दुचारण रसना राम प्रभु भगत वचल नह से वही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा त्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हों में बिख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। इक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछु दीना राम, वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम, बहां पकड़ तम ते काडया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभु अंतर जामी राम, सुमर सिमर नारायण पै पारज रामी राम, गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम। नान

इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिवलाए। महला तीजा, सतगुरु की सेव ना कीतिया सबल ना लगो पाओ, हों मैं रोग कमावना अप दीरक बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। कौड़ी, सब वडियाया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है, गुहज गल जीव की चीक है, सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख ले जाई है, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाई है। श्लोक महला तीजा, सतगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए, गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दैज पकड़िया गुर कहते सुवाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छपाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है जहाँ को नदर करे, मानस के देवते पड़े सच्ची पगत जिस दे, हों में मार मिलायन गुर के शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी, गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई, निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई, जे गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा, रुग ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चित लाए, हर सुख पल्लर त्यागया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंगले जन्म मरे फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए, नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक तिन मरे।

जिस बख्शे करतार नानक गुर प्रसादी यो मन ता तरे जा छोड़े अहंकार आसा मनसा मारे निराश होए गुर सबदी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई अगे सब आपे वरदा हर सच्चा न्यायी कूड़ियारा के मोख तिकिए सच भगत वध्याई सच साहिब सचा न्याओ है सिर निंदक साई जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा पूरे पाग सत गुर पाये जे हर प्रभ बख्श करे तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाए वडियाई होए मैला तीजा ते मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निधान सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान नानक

किए, जो कुछ हर करावे सो ओय करें, सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुरु के वल है, तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्ट गो लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सभा दुख है, मन मुख ध्यान न लागे, दुख विस्कार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निर्लाग।

हर का नाव मन पाया, गुरमुख देखन बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान पर गास्या, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। मैला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक सो जन पाई, सतगुर सेवो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दुख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कमो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, त्यो मनमुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे परवाओ। श्लोक महला तीजा, इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुर प्रसादी नाम मन वसिया, अंगिन नाम के आया, दिखिया माए उदास है, हो मैं शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां दियो त्रै गुण पुल्ले, हो मैं मोह वधाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चितलाया।

ना मरे ना ई हट विकाए गुर के शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर दित्ती तुरों हुकम बुद्ध निशान पुत्ती ताती जावाई सकी अगो पिछो टोल जिठा लायुन सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शो से सब जान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हल पल जे जे वे मुख हो गए।

वक्त इस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ इस नानक मन तन जिस प्रभु असै हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

दे सू दे रे चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा की नो मीच बिलैया खई है रे तनमंता अर निर तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना पढ़ो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर रामे रंग राता। बिलावल गिरो तज बन खंड जाई है चुन खाई है कंदा अजो विकार न छोड़ दई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे करो पव जल निरपारी राख राख मेरे दीठला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनित जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहूँ कबीर मेरे माधवा तू सर्व्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी। बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपते हो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए इन मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी।

सो गुरु नाम दयो। संत प्रहलाद की पैस दिन राखी हरनाशक मत बिद रहे करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो। कहत कबीर सगल पाप खंडन संत उदरे बिरावल को हर समान नहीं राजा ते तू पर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ। तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा। चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम क्यों को रूप है लाद निवाजा। बिलावल राख लो हम ते बिगरी शील तरम जब पगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ। अमर जान संखी ए काया ओ मिथ्या का की गगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी। संगत तोए साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए दिन की सुनियो मत पालो जम की खबरी। बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार।

अहिंसा आधारी क्रम से पाए पवे तेज तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन का करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या थे की क्या लेवा दई सरपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम तजो जग जीवन राम रहाओ आवश्यक न दी सही न दी सह जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवक सुन समान्या गुर सासी जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी आप के जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निज ता कह सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जो सब मैं पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया से अटके ले नरजा मन को ले देव जे ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन।

भगत की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अस्त दशा सिद्ध करतले।

बिलावल जे कुल साध जैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए राव ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिख खोए पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रहे जल समीप।

सिंह शरण कत जाइए, जो जम्बुक ग्रास है रहाओ। एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन कामना आवे। प्राण जो खाते

टोप दे महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जिए वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाए जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साले फल आस सब बिरथी जाए रहा जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई। इनके कुछ हाथ नहीं कहा करे ये बकुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब चढ़ाई। जो कुछ आस

तिन में झूठ दिल सब जाए। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खुन में किलित सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब दुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नार।

अपनी दिशा बहुत बहुत कदाचार, अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी।

तित दिन नेड़े को ना चुकाता। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुल उपकर दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जातो, तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो, इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर, सांप शीतल मन अपना। जैसे सतप सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहाँ कहाँ तुझ राख है सब थाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत पयो बद बडना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान। जो हर महल पावे गुरु बचनी, किस जेवड अवर नाही किस दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ई है, हर दिन को मार जीवाल न साथ है, ता मेरे मन कायत कड़ई है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो किस पासों मन क्या चोरई है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब चित सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर तब जान।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन

सब करता सब पुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता, ओपत करता परलो करता, व्यापत करता अलिप्तो करता, वक्तो करता बूझत करता, आवत करता जात भी करता, निर्गुण करता सरगुण करता। गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा। आंक्यो मीन कपक की में आई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भाए ले, पग पारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़।

प्रेरियो तू लाग परे ओ कुटुंबाए ने ज्यो पंखी एकत्र होए फिर बिछरे फिर संगत हर हर चाहे ने जैसे मीन रसन साध दिन से।

ओ तट पर लो निमक मझार, जाकी गत निज कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा ते आए, आए न जावे नेचर तने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडारे, सगल कटा देवे आधार, सतपुरुष जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमख जस गाओ, बाल सखाई पगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत, कौन महला पंजवा, नाम संग सीनो व्योहार, नामो ही इस मन का आधार, नामो ही चित कीनी ओट, नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम, मन का इष्ट।

सगल पूछे को करता दान, गर्भ कोर में राखन हार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट जत कट है सहाय, रहाओ रंक राव जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, दियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जा का अंक ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप अकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगप पहे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गौंड महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पवन से, जाके कीरत निर्मल सार, जाकी रेन बांछे संसार, कोट पतित जाके संग उधार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुर के शब्द मंत्र मनमान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत तो परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। फूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुर मुक्त ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा।

से छुटकार। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु पूरा पाये वड पागी, गुरु की सेवा दुख न लागी। गुरु का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सोए, गौन महला पंजवा। राम राम शंकर व्योहार, राम राम राम प्राण आधार। राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सब रहो समाए। संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम।

उतारे सबसे ऊंच राम परगास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्टि के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले साकत पत कोवे साध जना पद मल मल तोवे पंच फूट जने इकमाए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ त्यों लागी सह समाद सांखनंतर एको स्वामी सगल कटा का अन्...

जब पार ब्रह्म नानक निस्तरी है। गौण मेला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इत्तंते मार होए रही है सगल की रीना। कट कट रमैया सब में चीना। इन विद रमो गोपाल।

सुवाओ पद अभिमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर्षो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मन तन निर्मल।

सोहे दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम गौण महला पंजवा। धूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंदन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पय वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ अर्घ

साध संग जपिए हर नाम, सागर कर बोहित प्रभ चरण, अंतर जामी प्रभ कारण करण, राख लिए अपनी कृपा तार, पंच दूत पागे विकराल, जुए जन्म न कब हूँ हार, नानक का अंग किया करतार, गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे, बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपा

कोई नाही, कट कट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पत पावन प्रभ तुम्हारे, औखद कोट सिमर गोबिंद।

को कोई न सके जम काल, जग में आया सो परवान, गुरुमुख अपना खत्म पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्मा।

काशवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौन महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पन।

कर कृपा दी जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा संत का लिया तर्क बिदारो, संत का निंदक आकाश के तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तत्क्षण ताल, सोई संत जे पा

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ नारायण।

पायण भक्त अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा। जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है। साध संग जपे निरंकार निंदक कै मोह लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिसको होत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण

हार अपने दास रखे कृपा पार नानक के प्रभु प्राण आधार गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला ना इस दुख नहीं जम जाला ना एहो बिनसे ना एहो जाए आज जुगा दी रहा समाए ना इस उसन नहीं इस शीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरख नहीं इस सोग सब किस इसका एहो

करने योग ना इस बाप नहीं इस माया एव अपरंपर होता आया पाप पुण्य का इस लेप न लगे कट कट अंतर सब ही जागे तीन गुणा एक शक्ति उपाया मां माया का की है छाया अचल अछेद अपेद दयाल दीन दयाल सदा कृपाल ताकि गत नित कछु न पाए नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा संतन के बलिहारे जाओ संतन के संग राम गुण गाओ संत प्रसाद किल विच सब गए संत शरण वड पागी पए राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल साधु जन की करे रवाल काम क्रोध इस तंते जाए राम रतन वसे मन आए सकल जन्म ताका परवान पार ब्रह्म निकट कर जान पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे जन्म जन्म का सोया जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रहो सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गौंड अष्टपदियां मैला।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पाए, सगल स्थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता कह निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कह सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले। गौंड नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस

जले जैसे काश का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे गौंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहा एले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कत बिन से गगन न जाए ले। मोह बैराग पायो एहो जियो, आए कहाँ गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहाँ ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे। हर में तन है, तन में हर है, सर्व निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे।

कालो साट हथ ना तोड़े तरे ध्यान वहां कह हृदय बटे भगवान क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर को दीना कुंचर पोत ले ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ ना एहु जति कहा वैसे हो ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना तीख मंगासी ना इस पिंड ना रक्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीव ना मरता देख इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर हो राम की अंश जस कागज पर मिटे नमंस गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़बो काल एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई रहाओ सुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता लड़की लड़कन खैबो ना है मुंडिया अंधन तापे जाहे एक दो मंदर एक दो बात हमको साथर उनको खात मूड पलोस कमर बद पोची।

सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन पद शरण कबीर गौंड। खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का होए विनाश।

हार शंख को बिख बिख संसार कर सीगार बह पखियारी संत की खिड़की फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिसका बोझ

संसार के अंचल लरी गौंड ग्रेसो बाजा कह रहे ना है आवत पहिया कूदे जाहे वाके अंतर नहीं संतोख बिन सोहागन लागे दोख तन सोहागन महापवीत तपे तपी सर

जो लग प्राण तौ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पावन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े पूपत राजे है छेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिट गए फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिमी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाई है साधु बिन कैसे अवगत जाई है जैसे माँ पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस दिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सोदे, पांच पलीते को प्रबोदे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूछे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते हुए अनाद, जपिए नाम अन कैसाद रहाओ। जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बे के संग निकावन। अन्य बाहर जो नर होवे, तीन पान में अपनी खोवे। छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सोहागन ना ओरंड। जग में बकते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी। अन्न बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकुर मन मानिया। राग गौंड बाणी नाम देव जी।

तो न पुजे हर कीर्तना मा अपने रामे पजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख वेद चतुर परता सगल कर्म अच्छता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सिवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पर सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण सजे वहां को ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ। जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा जो बिखई हेरे

हर हर करत पूतना तरी, बाल कातनी कपते परी, सिमरन द्रौपद सुत उदरी, गौतम सती शिला निस्तरी, केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली को दिया, प्रणवे नाम ऐसो हरी, जास जपत पै अकदा।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपाने। गुरुमत राम नाम गहु मीता, प्रण में नामा यू कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ।

लांगत लांगत जाती थी। तांडो तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक नी

कहो रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड, जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सिरा पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बेथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पनार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे, निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पौहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया, जोड़।

न जाना तेरा एको नाम पछाना, न जाना हरे मेरी कौन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते, रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है, कबहू जाय प्याले, लोभी जियरा फिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले, मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई, ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जो तू देवे, अंते होए सखाई, राम करी महला पहला, सर्व जोत तेरी पसर रही, जय जय देखा तह नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरो पार स्वामी, रहाओ जय पीतर कब पीतर बसिया, बार काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही, आपे नेरे आपे दूर, आपे सर्व रहा पर पूरे, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तैरिया समाए, अंतर सहसा बार माया, नैन लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेंगा प्राणी, राम कली महला पहला, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे, किन बिद सागर तरिये, जीवतिया नह मरिये, रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला, आशा अंदेशा दे पट गरे।

आत करे जब आशा अंदेशा तभी क्यों कर एक कहे आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले इन विद सागर तरिये जीवतियां क्यों मरिए रहाओ दूजा राम करी महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने पचोली मंगल कहताई तीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बार न लागे रहाओ पानी प्राण पवन बंग राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता तीरथ आखा तामन सेव करे कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे राम करी महला पहला सुन माचिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ऐनस सुन समाज समावे रहाओ तिथिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

पाए, तनवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संग मिलाए। दीठा दारू पो

जंग जाओ पांडे पाओ पवे तुत आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किस किया सो किस करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सैकिया गल्ला दर

कौन बुझे विध जाने खुद खुद चलत आप कर चीने आप तक पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई किसते मुक्त परमगत होई रहा दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित और न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे इन भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तें तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा।

दिया देह तारी, राम कला निभे पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग देओगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंद जपे निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन में मुंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन करना।

गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम किया है भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपत नामे सुख पावे हर नामे नाम समावे। गुरमुख भगत करो सब प्राणी हृदय परदास होवे लिव लागे गुरमुख हर हर नाम समाणी। रहाओ हीरा रतन जवे हर माणक बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा गुर कार तली दिखलाया। पाग हीन मन मुख नहीं लिया तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा। राम जना मिल पया आनंदा हरनी की कथा सुनाए। गुरमत मेल गई सब निकल सत्संगत मिल बुद पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए जो जो सुने कहे सो मुक्ता राम जपत सोहाए। रहाओ जेवर पाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के पागहीन ना सुखाए। जो जो राम कहे जन ऊंचे नर निंदक दंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज न पाए। दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए। हम बारिक तुम पिता प्रभु मेरे जन नानक बख्श मिलाए। राम करी महला चौथा। हर के सखा साध जननी के तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध सही प्रभु पाए कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे अम्यो अम्यो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावे। रहाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदरी पावे। हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुश।

मेरे मन सतगुरु सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई, मन तन साथ।

छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई सतगुरु मिलो नवे निड पावो इन विद तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किसो करो बुराई सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहज मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा ने व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतनी सगल बेगनी ए विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा

आसा जय अवगत नाथ अगम तने, तन मन हर का तन सब हर का, हर के गुण हों त्यागनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अम्बे अम्ब मिलोगनी। रामकली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध ना जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने, अचरज किस तैन न जाई, बस

करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गतमित आपे जाने हर आपे पूर पंगारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया।

सर मेरा अनक राज भोग रस मानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ कीर्तना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्णा काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ना कतू जाता बरना साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसमा हमारा।

पूरन हम भी संग अधाए मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माथे वजै रबाबा करनो मद बासुरी बाजे जेवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

सब कोई ओडा नील कोई सुपेद कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू कोई बांछे पुष्प कोई सुरजिंदु कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभु साहिब का।

रोवन हार दे ऊट सुदाए, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंद, ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत।

क्या सूत आई खाए जो मैं एक मत है किया तै बिखरे थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकुरी अनूप वाजे।

बैसा कर डंडा करया, क्या तू जोगी गर्भ परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी चिंखा दो दिहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई। जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला। नामे चिंता नामे बत्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर। क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई। राव दूजा राम कली महला पंजवा, करन करावन सोई। आन न दीसै कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना। गुरमुख मिलिया रंग माना, और सोरे हर रस मीठा। गुरमुख किने विरले बीठा, राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम। पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी। अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा। सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हो सब बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ मैं मां जा की जहर गंभीर, होए निहाल दे जिस पीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप, लाल रतन किस पाले पर्या, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप दे।

पास ना को दूत नहीं बैराई गल मिल चाले एक भाई जा को गुरहर दिए सूखा ताको बौर ना लागे दुखा आपे आप सर्व प्रतपाल नानक रातो रंग गोपाल राम करी मैला पंजवा मुक्ते परताती का सैत हृदय राम नहीं पूरन रहत उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे अपना कया आपना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध

प्रीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पही कर पार जिसे सहाय होए भगवान अनक जतन ओ

संत जनी परदास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलत मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दे दिर्धानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माने इहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस

अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग नहीं।

पास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कभू न करदा संते संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध परदास गैर

निवा तेरे काज ना गृह राजमाल तेरे काज ना दुखे जंजाल इष्ट मीत जान सब चले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण गायले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत

कर कर ठाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान नान।

पंजवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो या नाराच प्रत पार नित सार समारे अंत की बार ऊट सिधारे।

जीवा, जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का

है। गुरुमुख नाम निमख हृदय वसै, हर के नाम की वडियाई, कीमत कहन ना जाई रहाओ। सूरबीर तीरज मत पूरा,

आंसू ते माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होई निर्मल जियो सोदत सोदत सोद विचारा बिन हर

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

इसे त्याग सत्संगत करे वडपागी नानक ओतरे राम कली महला पन्नवा आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्तु तू आप।

विस्मन विषम पै विषमादा परम गत पावे हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सके न तार, सगल उपाय

परमेश्वर स्वामी काटको प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभु तिल टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन चरण कमल हर सरन मन तन हर ओही त्याया आनंद।

पंच बटवारे से मीत कर माने सो कर सेव जित उदरे मीत गुण गोविंद रविया दिन राती साध संग कर मन की।

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तर

एक त्याय है साध कै संग पाप बिना से नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रव रहा गुणतास दर्श दे तारो प्रभु आस नित नानक चितवै।

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

मिला। साहा धन न करे विचार, साहे ऊपर एक अंकार, जिस गुर मिले सोई विद जाने, गुरमत होए ता हुकम पछाने।

वर्त कपन कर मन नहीं पूजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पूजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल।

तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हठ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल।

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ ज्यो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करें विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया।

जो भी सह सब सह मया आज पुर अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय लय पार पया मुए कोरो में किसे सुनावे पैसा अगर असराल पया देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दुख सुख गुरु मुख सम कर जाना, हरक सोग ते बिरकत भया, आप मार गुरु मुख हर पाए, नानक सहज समाए लया, राम कली दखनी मैला पहला, जप सत संयम साच दृढ़ाया, साच शब्द रस लीना, मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना, एनस रह एक लिव लागी, साचे देख पति ना रहाओ, रह गगन पुर दृष्ट समय सर, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन परपुर लीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक में सर्व सर्व में एका, ये सतगुरु देख दिखाई, जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभु लखन न जाई, दीपक से दीपक प्रगासिया, त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सिखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

तर पावसागर आत्म तत्व विचारी गुरु सेवा तेसना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन

आवन जान बिपूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे हर सुन रह लिव लाए रहाओ सत संतोख पत कर चोली जोगी अमृत नाम पुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत वजाई मन दृढ़ कर आसन

कहे नानक मुक्त होवे जोगी। साथी रहे समाए राम करी मेला तीजा। भगत खजाना गुरुमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई। संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध उच्चों जाई। आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई। जिसते उपजे तिसते बिनसे अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई। सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाई।

नाम स्नान करें से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही बिन नावे बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश।

जे नाम नमन निध पाए मनसा मार मन सह समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चित अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हौ गुरसाला ही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक कह बेनंती नावो गत पत पाई राम कली मेला तीजा हर की पूजा दुलंभ है संतो कहना कछु न जाय संतो गुरुमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर दिन सब कुछ मेला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाई पूजा करे सब लोक संतो मन मुक्त थाए न पाई सबद मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु सबदी खाए पाए पूजा करें पर विद नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाए पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो कूड़ करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछ

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाई सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वसिया।

एक पेट करें सिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अंधिन भगत करें दिन राती राम नाम उर्धारी अंधिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन भगत ना हुई।

कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जाय मिलिए राम मुरारी, अंगिन जागत रहे दिन राती,

तो जन सुजय जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्माद मेरा प्रभ रहा सर्वथा।

किन्हीं कया हो तीर्थवासी, कोई अनपज पया उदासी, किन्हीं पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हीं कया मैं कुल्हे वड्या।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले बिहोरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखन हार समार

ठाकर को रख लियो चीता, जिन दिया तुझ पवन अमोला, जिन दिया तुझ नीर निर्मोला, जिन दिया तुझ पावक बलना, तिस ठाकर की रहो मन।

नानक दास संग पातर करया राम कली मैला पंजवा काहू बिहावे रंग रस रूप काहू बिहावे माए बाप पूत।

प्रतपाल रहाओ। जल पीवत ज्यों सुखान तंत, तन बिजसे गृह आवत संत। लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर हर नाम प्यार। किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला। प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

ऐसे प्राचित संत संग विनाश, जो साबुन कापर ऊजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चात्रिक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तय

अष्टपदी एकोंकार सतगुरु प्रसाद दर्शन तेतक पाप सब नाशे हर सो देह मिलाई मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंत हो सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत पूर मुख लाए।

साच कर्म का बेड़ा बांधिया, पवजल पार पवाई, बेसुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई, अकाल मूरत अजूनी संभो, कल अंधकार दिपाई, अंतर जामी जीवन का दाता, देखत तृप्त अघाई, एक अंकार निरंजन निरपो, सब जल फल रहा।

अगली कृष्ण उलाही संतो रहाओ। खोजत खोजत लाल इक पाया, हर कीमत कह न जाई संतो। चरण कमल क्यों लागो त्याना, साचे दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पै निहाला, हर सिमरत तृप्त अधाई संतो। आत्म राम रविया सब अंकर, कट आवे कट जाई संतो। आप जुगादी है भी होसी, सब जिया का सुखदाई संतो। आप व्यंत अंत नहीं पाये, पूर रहा सब थाई संतो। नीत साजन माल जोबन सुत, हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली मैला पंजवा, मन बच क्रम

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करके प्रभ अंत न पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

नानक मन प्यारे तू सदा सच कमाल, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने, जी जंग सब खेल तेरा क्या को आंख वखाने, आंखें ता वेखें सब तू है जिन जग तू पाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा की सच्चा मन वसाया, जी जंग सब तुद उपाय एक वेख प्रसन्न आया, लभ लोभ अहंकार चूका सब

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद कृष्णा बहुत नाम बोलना, समयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना, गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समान।

कर्म कमाए, सहसे जियो मलिन है तुझ संगम तोता जाए। मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए, कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए। जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले कुन्नी जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमानी। जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेवती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आप में समाले, आप छाड़े सदा रहे परने गुरु बिन और न जाने कोए। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए, जो को गुर के बेमुख होवे।

सब रतन है हीरा जित जराओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपके हुक्म वर्ताए हुक्म वर्ताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन हो वह मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो हो वह एक

जग में आए थे क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीर जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुरु प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक के नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर तार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सन

मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया।

अनहद वाजे शब्द आगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रवत्याय सब किछ पाय मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरुमुख मिल निर्गुनिये।

पुरधार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम

आनंद मंगल गुरु चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम। सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया। हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया। हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया। बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया। मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम। दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम। दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो। मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो। सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा। बिनवंत नानक प्रभ मया की जय।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत

बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो

भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रे रंग जागे न छिद्र लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर।

बिन मिल बे शांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत कब।

0: राग फगन गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मनत आए, सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया,
1: हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ ससे सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले माणक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे, अंत निरंतर साचा।

गर्भ गले बिख खाया। गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया। गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई।

जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर, क्यों ना मिले काटे मन पीर, वाट वटाऊ

सह सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई और क्या कही है किछ कह न जाई खोजत खोजत।

गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात

मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छी जय दे खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड, तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने, छाया छूची जगत पुलाना।

माया निर्मल नाम। जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ, जो उसारे सोटासी तिस बिन अवर

वन तेन तू डत फिर रही, मन में करो विचार, लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार, उत्तम होवा प्रभ मिले, एक मन एक पाए नानक।

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाने आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जा पै सदा।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ। क्या पवी है सच सूचा होए, साच सबद बिन मुकुत न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी, हूं संत जना बल जाओ।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले।

एहो मन लाया कित बिद आसा मन साखाई, कित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एहो मन लाया, मन सा आसा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर

खास कमावे गत मित सब दे पाई। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुकम विस्माद हुकम पछाने जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहीं है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाये साचे शब्द समाये लिया एक एको सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब कि

खबर न पावे, दूजे आवा गौण पया, आवा गौण मिटे गुर शब्दी, आपे परखे बख्श लिया। एका बेदन दूजे व्यापी, नाम रसायन विसरिया, सो बूझे जिस आप बुझाए, गुर कै शब्द सो मुक्त पाया, नानक तारे तारण हारा, हो मैं दूजा पर हरिया।

गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचय वेद विचारी, गुरमुख परचय तरिय तारी।

गुरुमुख परिचय सो शब्द ज्ञानी, गुरुमुख परिचय अंतर विद जानी, गुरुमुख पाये अलख अपार, नानक गुरुमुख मुकत द्वार, गुरुमुख अकथ कथे विचार, गुरुमुख निभे सब परवार, गुरुमुख जपिए अंतर प्यार, गुरुमुख पाये शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरुमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुरु के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यो कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरुमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरुमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरुमुख सर अपसर विद जाने, गुरुमुख परवित नरवित पछाणे, गुरुमुख तारे पार उतारे, नानक गुरुमुख शब्द

जोग जुगत सच रह समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड़ पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पति आए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे नानक गुरमुख चोट ना खावे। गुरमुख नाम दान इस नान गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख पाव पंजन।

गुरमुख पावै कट कट पेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मिटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता। बिन गुर पर मैं आवे जाए, बिन गुर काल न पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डोलाए, बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाट, नानक गुर बिन काटे काट। जिस गुर मिले तिस पार उतारे, अवगुण मेटे गुण निस्तारे, मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार, गुरमुख कदे ना आवे हार। तन हटड़ी एव मन मन जारा, नानक सहजे सच वापारा, गुरमुख बांध्यो सेत बिदाते, लंका लूटी दैत संतापे, रामचंद मार्यो एह रावण, पेद बपीखण गुरमुख परचायण, गुरमुख सायर पाहन तारे, गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहत्यान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख हो मैं शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए। कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार। पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला। एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाई।

आहार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हे वै का कार मंदर अगन पिराहन कवन गुफा जित रह आवाहन इत उत किस को जान समावे कवन ध्यान मन मन है समावे हाँ हो मैं विचों खोवे दूजा मेटे एको होवे जग करड़ा मन मुख गावार शब्द कमाये खाये सार अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मरे सतगुर के पहाने सच पैराता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसे सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिख अगन निवारे नानक नदरी नदर प्यारे कवन मुख चंद हिवे कर छाया कवन मुख सूरज तपे तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहे कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे कवन जोत जो काल संगार है बोले बाणी नानक विचार है शब्द पाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा सुख दुख सम कर नाम आधारा आपे पार उतारण हारा गुर पर चय मन सा

तत्तो तत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक नेचल मिलन सहजे, अंतर सुन्नंग बाहर सुन्नंग, त्रिभवन सुन्नंग म सुन्नंग, चौथे सुन्ने जो नर जाने, ताको पाप न पुन्नंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विदाता, सुनो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रते से कैसे,

पार, नानक मनमुख ना बुझै गवार, कबुद मिटे गुर शब्द विचार, सतगुर पेटे मोख द्वार, सत ना कीने मनमुख जल जाए, दुर्मत विचर

पर सच भाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिय पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए।

पाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जय देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द कट में वसे विचो परम गवाए तन मन निर्मल।

ते ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हों मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुर ते काल न ग्रासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न पाद्या सच न अरा दिया अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक

त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार, वर्ण पेख अस्वरूप सो एको एको शब्द विदानी, साच बिना सूचा को नाही, नानक अकथ कहानी। कित कित विद जग उपजय पुरखा, कित कित दुख बिनस जाई, हो मैं विच जग उपजय पुरखा, नाम विसरे दुख पाई। गुरमुख हो वै सो ज्ञान तत् विचारे, हो मैं शब्द जलाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, साचे रहे समाए, नामे नाम रहे बैरागी, साच रखिया उधारे। नानक बिन नावे जोग कदे न होवे, देखो हृदय बिचारे। गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए, गुरमुख सच बाणी प्रगट होए, गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए, गुरमुख निज कर वासा होए, गुरमुख जोगी जुगत पछाणे, गुरमुख नानक एको जाने। बिन सतगुर सेवे जोग न होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई।

समाए, हो मैं एहो बीज है सैसा गया विलाए, ना किच बीजे ना उगवे जो बक्से सो खाए, अंबे से ती अंब रलिया बहुड़ ना निकस्या जाए, नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए, लोक के वेख है बपुड़ा जिसनो सो जी ना है, जिस वे खा ले सो वेख है जिस वस्या मन माहे, महला तीजा मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख पाए, दुख विच जमे दुख मरे हो मैं करत विहाए, आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाए, जो देवे तिसे ना जानई दिते को लपटाए, नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए, महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मिले सोए, सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए, अज्ञान का प्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होए, नानक एको नदरी आया जह देखा तै सोए, पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, सब किछ आपे आप है गुर शब्द सुनाई, आपे कुदरत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बनत बनाई, आपे वेखे सुने आप गुर शब्द से आई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, रहा उस श्लोक कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए कैसे बात।

तीजा परम पुलाई सब जग फिरी फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई।

को सच कमावे, नानक सो तपा मोख अंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे यो तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द समाले। सतगुरु की सेवा यो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमति कर चानना आनेर विनाशन। हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वन त्रिन, सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पान। सब देही सोजी पई सच्चे आप बुझाई, श्लोक महला तीजा।

होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ करदार सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तखत सच्चा।

पावै तिव हर गुण तास पौड़ी। छत्ती जुग गुबार सा आपे गणत कीनी, आपे सृष्ट सब साजियन आप मत जीनी। सिमरत सासत साजियन पाप कुण गणत गणिनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतिनी। सब आपे आप वर्त

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदै सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा। मन मुख बोल न जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार, ओए थाओ कुथाओ

अनुसार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुझ जे वरदाता नाए किस आस सुनाये गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाये रख तत सादा बाहरा सची वड़ियाये जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मिलाये कप अंतर अमृत रखियो न गुरमुख से।

न कोए, सचो सच वखाणे कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवे हरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कर। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई, श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंक फिरे, ना सत मूंड मुंडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तछावे दुख सहे, ना सत हस्ती।

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब दरवे, सब कट मेरे हो सब ना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंध सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत मैं रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औ हठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास,

हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम सचाता। बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता। मन मुखार मंदर की सार न जाननी तिन्नी जन्म गवाता। सब में एक वरदा।

0: कडवही तलबा पौसन आसिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आए तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नान का ओड़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किछ कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगति रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किछ हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला।

जाए। जप तप सब किछ मन्ने अवरकारा सब बाद, नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी। काया हंस तुर मेल करते लिख पाया, तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किछ आपे

चित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए।

बलेद हल हले मी हाली चित चेता वत्तर वक्त संजोग नाव बीज बसीस बोहल दुनिया सगल दरोग नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम त्याई है मच तप कढोले अंतर प्रगास

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है

मत्सिर आवे पार पौड़ी। सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्यायन से सच्चे जिन हर खर तन पल्ले। भगत सोन गुण गाउंदे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले।

चित करे नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस आए पौड़ी आपे आप।

जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे ना लायन, नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध।

सिर दातिया जग हाथ हर इच्छा दी मैं टेक है जो सिर सबना समरत सब गुरु संत मिलाया मस्तक पर के हाथ।

मन तन हुए निहाल बिंदक नजर चास नौ निध नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई।

बहुतारोहा व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा मन लागा तुस्मोहा ठग ऐसे ठग रल आया साथ दे इको जेहा सतगुर सराफ।

इकसकी शरण आए इकस्यों का तिरहड़ी दूजी नाही जाए। इको दाता मंगिए सब किस पल्ले पाए मन तन सांस गिरास प्रभु इको इक त्याए अमृत नाम निधान सच गुरमुख पाया जाए।

का पौड़ी, जिस कैमस्त कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा छकड़े बाजार सोहन विच व्यापारिये वखर।

जीव दे दे गुना सत पैन पराव है पारंगत दान परीव दे नानक राज चलाया सच कोट सखाणी नीव दे लेने तरियन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दे।

खती है, जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

मुद्रा मदद सहज तुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीरथ बरत नेम सुच संजम, रव सस गहने दियो रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, उहो महारस पियो रे। निजर धार चुए अत निर्मल, ए रस मनु आरा तोरे। कहे कबीर सभी।

मेरी, अब तब जब तब तू ही हम तो ए प्रसाद सुखी सद ही रहा तोरे परोसे मगहर बस्यो मेरे तन की तप बुझाई पहले दर्शन मगहर।

हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे हुए सुरन में जूझ।

जी मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम ना बोले पांडे दो जग परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हथ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशी कुजुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जड़हर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा देखिया। मुंदरा मोन दया कर चोली,

करबारी। पवन काज सेजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन एक निमक ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसे।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु

रहा था। जब कुंभक परपुर लीना कह बाजे अनहद बीना, बकते बक शब्द सुनाया, सुनते सुन मन बसाया।

बेदार जागत मुसीहत हौ रे पाई, निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाई। रहाओ नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झारे, नालियेर फल से बर पाका मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई, कह कमीर कुल जात पांच तज चीटी होए चुन खाई।

आकाश मदे परमे अले पंच जना से बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कलाचित मांडी अले रहाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुआर पुरंदरिये

राखी अले। वेद पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावोगो। बैरागी रामे गावोगो।

सूरज दोए सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो, तीर्थ देख ना जल में पैसो, जी जंत ना सतावोगो।

की जय, आसन जो निर्माइल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सर पौ न पूजय, मने न की जय रोष, जमे न दी जय दोष, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय, जसरथ राय नंद राजा मेरा, रामचंद्र प्रणवे नामा तत् रस अमृत पी।

सतगुरु प्रसाद इरा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तिथाई संतो तहां

तह बाजे शब्द अनाहद बाणी तह चंद ना सूरज पौन ना पानी साची जागी गुरमुख जानी उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे अमृत रस गगनंतर बीजे एस कला जो जाने पे हो एतास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर थाती जागत रहे सुख।

अलिया पाखे पांचो इंद्री बस कर राखे गुरु की साखी राखे चीत मन तन अर्पे कृष्ण प्रीत कर पल्लव।

कोट कोट दोख बहुकी ने सब पर हर पास खरे रहाओ। हर हर नाम जपें आराधें सेवक पाल।

नर नर हरे पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड पागी हर नाम त्यावे हर के भगत हरे इनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे।

गुरबचनी हर तारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरखो तम हर नाम जन गायो सब दालग दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन

आई हम जीवें देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले मत महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुरु प्रसादी हर नाम दियायो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुरु सतगुरु संग सके जो चंदन संग बसे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को नाम।

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुण

उस तत तारो हम करें प्रभु सिमरण तुम जल निध हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर देवो कर कृपणे।

मन सेव सफल हर काल, ये गुर पग रे निरवाल, सब दाल पंज दुख दाल, हर हो नगर निहाल, राव हर का ग्रह, हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल, लाल हर लाल, हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो,

हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल।

अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सुख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधार्यो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसार्यो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचार्यो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवार्यो महा बिखम अग्नि का सागर किस्ते पार उतार्यो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहार्यो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर्व है कृपा निज कट कट दुष्ट समायण जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास दशायन।

हर तज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होए पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उर्धारे। हर हर कथा बनी अति मीठी, जो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, हथ पी के लोग विकारे। जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अंग साध विसारे। गुरमत राम नाम तन

मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहार।

सुरत वजी है दैदुस हर मुस्की मुस्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे गावत गावत हर गुरु।

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्कीनी सब नथहारे नानक प्रभ खिंचे तिग चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनो मिल कलमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गणक उधारे परस न परस पै कुब जाको ले बैकुंठ सिधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी जम शंकर मार बिदारे मानुख।

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी कब कूप कदे पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल न लाल गुलारे। जैसा रंग दे सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर कदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन श्रद्धा कर हर तारे। मेरे प्रभु श्रद्धा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नगरी आवे सब एका नगर निहारे। हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे। बन बन टूट

कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे, सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया फैवारे, जो जन चंद्र हांस दुखिया, त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे, प्रभ को जन अंतर हृदय लोचे, प्रभ जन के सांस निहारे, कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे, आपन आप प्रभ ठाकुर, प्रभ आपे शिष्ट सवारे, जन नानक आपे आप सब वरते, कर कृपा आप निस्तारे, नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहु उबारे,

संगत परम पद पाया पदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखा।

विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंदर हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाद बोध आदेश हर प्रवराया, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया, शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तरा।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना मन पावनी, हर त्यायो अपरम प्रो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगह बाजिया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालिया, जो लोन जलय गलायो। मत दे हर प्रब अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुर पाया, हर जप्यो परम पौ पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग नाल है सवागा, हर चारे ओ रंग मिले गुर शोभा।

अवर टहला चूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को न मेटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाओ जा कै सिमरन मिटे तंद जा कै सिमरन छूटे बंद जा कै सिमरन मूरख चतुर जा कै सिमरन कुल्हे उदर जा कै सिमरन पौ दुख हरै जा कै सिमरन अपदा टरै जा कै सिमरन मुच्चत पाप जा कै सिमरन नहीं।

खाए बिलास। जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक तर।

दूर, नैन दर्श पे खून स्पोर। हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल। संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत। संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ। संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास। संत बचन मेरे मने मंत्र, संत प्रसाद मेरे।

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जां कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जां कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड लेहो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांधव भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा।

ओ बाप माँ दो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन के तक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासा रे। राग मारू मैला पहला कर पहला।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिनी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

दुख पर फुड़े पूर्व लिखे माए, सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाए। विछड़िया का क्या विछड़े, मिलिया का क्या मेल, साहिब सो साला ही है जिन कर देख्या खेल। संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते पोग, विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वड़े आई, मिल माया सुरत गवाई।

किछु खाजै किछु तर जाइ जे बाहुर दुनिया आइ सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखा।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगै नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

कमाए हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण काए तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आपको अवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार है रहाओ ना इहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना इहो तन डूब

इस तन बिन कहो किने परम गत पाए, तनत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मूड़े काये चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्राप तज छोड़ तो अप्यो पीज है। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यो अमृत पीजे। मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तर टिके। साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत राजा तख्त टिके। गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पे खारी। माने हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरपुरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनिया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझिए, बहुड़ न मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटिए मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला जोगी जुगत नाम निर्माइल ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे,

ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी, जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुरु बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला कर

आप में ख्याली जम पुरफासेगा जम जाली हेत के बंधन तोड़ न साके ता जम करे खुआरी जियो ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो मारू मैला तीजा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद।

पणत नानक लेखा मांगे कवना जाचू का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथिय निज करवासा होए सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ एथे नावो पुल्या फिर हथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आंदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाए रहाओ ना मैं जात ना पत है ना मैं थ्यो ना थाओ शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्श।

नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा सालाही है तिस जेवड़ अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराध तू।

हर हर आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास बिन गुर प्रेम ना लब्बई जन वेखो मन निर्जास हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर सावास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास मन मुख भाग विहूनिया।

मैं मन तन वडड़ी आस, गुर पावे सुन बेनती, जन नानक की अरदास। मारू महला चौथा, हर हर कथा सुनाए प्रभ, गुरमत हर हृदय समाणी। जप हर हर कथा वड पागिया, हर उत्तम पद निर्वाणी। गुरमुखा मन प्रतीत है, गुरपूरे नाम समाणी। मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाओ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई है अकथ कहानी। संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पानी, मेरे मन तन नाम आधार।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर पाओ लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुरशब्दी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख, रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रव राख, अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे।

हर हृदय सदा सदा समाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम।

दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर न जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हाँ अंदिन नाम लही करता रे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। डर पै तरत आकाश नखत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र विचारा। एका निरपो बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ, देह तार अर देवा डर पै। सिद्ध साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पै, केते रूप उपाया। छल बपरी ए कौला डर पै, अत डर पै धर्म राया। सगल समग्री डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सो है दरबारा। मारू मैला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे। मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे, मोह दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे। रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो, बद्धिक तरे बिचारे। एक निमख मन माहे अरादियो, गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलादे, हर नाखस नखे बिदारे। विदरदासी सुत पयो पुनीता, सगले कुल उजारे। कवन पराध बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। आयो साम नानक ओट हर की, लीजे पूजा पसारे। मारू महला पंजवा, वित्त न वित्त प्रमेय बहु पांते। अन

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

सहज आनंद रखियोगे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरेओ आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घर नहीं जानियो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानियो पयो कृपाल ठाकुर सेवक का सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन।

सद हजूर हाजर है नाजर कतै न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन पीतर मैं मा कथन न जाई निरपो पए सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुला रहे हो, हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो, मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो रहाओ, असाद रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू तारे हो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो एहो नानक तत बिचारे हो, मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ, जा के वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार, नानक गयो।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें एआनथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवे हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मान्या जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए परग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कभू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए मृतक त्याग दूजा पाओ। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा बार टूंडन ते छूट परे गुर कर ही माए दिखाया था। अनपो अचरज रूप प्रभ पेखिया मेरा मन छोड़ न कतहू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो तें अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मन तृष्णा बूजी अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम।

ताओ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जम्या निखुट ना कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो प्रगास।

रूप रंग खुशियां मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूढ़े रंग राते जिन गुर मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सोबा नानक खसम त्यारा।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसे गीता के, साध संग पै जन मुक्ते, गत पाई नानक नगर नहलिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते देखा जात न को, मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो उदारो, करण पला मिटे बिल्लाटा, जप गोविंद परम पौ फाटा, साध संग बिरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत केला जात केला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना

मन तन बासना बहुत विस्तारा, अहं मेव मूठो बेचारा, अनेक दोख और बहुत सजाई, ताकि कीमत कह न जाए, प्रभु विसरत नरक में पाया, तह मात न बंद न मीत न जाया, जिसको होत कृपाल स्वामी, सोजन नानक पार गिरामी, प्रमत प्रमत प्रभु

प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना पन तारिया, महा अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आग अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह कावो।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम से आई नानक दीन नाम मांगे है दुखिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर।

नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा तत्त उधारन तारन बल बल बले बल जाये ऐसा कोई फेट है संत जित हर हरे हर त्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यह ओट आधारा।

अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तेखत सगल सियानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका ठा।

समाज सुभाए हर पंडार हाथ आया नानक गुरते पाया मारू मेला पंजवा कर छेवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियानपा मिल साध त्याग गुमान और सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापे मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे राव देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपे सीध नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू मेला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण शरण पज संग साधु पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कभु नहार मारू मेला पंजवा तज आप बिन

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा।

हरण हर नाम अमृत पाठ करो कृपा मुरार माधो। सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि मैला पंजवा कर सतवा इको अंकार। सतगुर प्रसाद संयोग विजोग तुरु ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे परहारे पूरद मुख महा गुबारे सास सास समाले सोई उठे खत्म छड़ाए लया विचों गर्भ निकल आया।

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो गनताहु गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई। मारू मैला नावा अब मैं कहा करो री माई, सगल जन्म विक्रम से खोया सिमरियो नायक नाई रहाओ। काल फांस जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाई। जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई। मारू मैला नावा माई में मन को मान न त्यागो, माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव। जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो, कहा होत अब कह पछताए छूटत नाहिं भाग्यो। ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो, सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो।

असर तीरथ बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपूर पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलो वै जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मच्छी है अमृत पाये नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कै शब्दे जे मरे फिर मरे न दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसे सब कुल उदाहरण हार सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा दूजे पाए कार कमावनी नित तोता है सारा साची संगत थान सचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार न पार वंजी हाथ न केवटू जल सागर सराल बाबा जग पाथा मा जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था शब्द लंगावन हार सिखे पवन न पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सो लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजय सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाई किसनो दीजे दोष गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच्छ पाई कुंडी जाल बताए गुरमुख फाखा पाई फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए हौ मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तामत जग बांदिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणी है कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तै जाओ जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो नाई खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाय जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे सुख नहीं गाडे लादे चार

पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजे सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोती है तू दीपक तू तूप, गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। सच पावे साध

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर ताकिए पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेटी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़न से आमूठी विन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मनमुख लहर कर तज विदूचे अवरा के कर हेर गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेट दुर्मत तू मन के रह दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे छाणी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत को है नाम न जपे क्यों सुख पावे बिल नावे क्यों सो है मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभिमाना मनुआ डोले दै दिस्तावे दिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिक पी रे माया का देवाना कीर्तना मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रह सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा ना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उर्धारी नाम बिना नहीं छूटत नानक साची तर तू तारी मारू मैला पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरियो पार अपार तरे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास समार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे तरन पलाव करे नहीं पावे इत उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूण कुटंब क्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर शब्द ना आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले
मेरी मेरी करते छीन खड़े। तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे। चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे। सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे। विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे। पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे। दिन गुर बाद जीवन होर मरना दिन गुर शब्द जन्म जरे। खुशी खुआर पै रस भोगण फोकट कर्म विकार करे। नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर धर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे। ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे। हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे। हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की।

दोहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगुण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ, तेयड़े तिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास, लेख निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए, तिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए, किती चखों साजड़े किती वेश करे हो, फिर बिन जोबन बाद गयम।

संहार। गुरमुख बूझे जानिए होमे गर्भ निवार। तो पावन तो जहिया मुजहिया कितिया नानक नाहो ना विछड़े तिन सच्चे रतड़िया मारू मैला पैला। ना पहना पर जाइया ना से ससुड़िया सच्चा साथ ना टूटे गुर मेले सहिया। बलिहारी गुरे अपने सद बलिहारे जाओ गुर बिन एता पव तकी गुर तिर मेलम दित्तम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासियां देर जिठानड़िया आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ।

एक जोत दोए नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाए, बिन सतगुर पल्ले ना पाए, सतगुर कह पाने मन।

ताने जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचों।

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा

कार्तिजा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो रहाओ रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई।

एक निमख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सो थान विसार्यो, एक निमख नहीं मन लायो, पुत्र कलत्र ग्रह देख समगरी, इस ही मैं उर्झायो, जित को लायो तित ही लागा, तैसे कर्म कमायो, जो पयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो, मारू महला पंजवा, कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग, हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग, मेरे मान को स्थान मीत साजन सखा बंदत अंतर जामी जान रहाओ, संसार सागर जिन उपायो शरण प्रभ की गही, गुर प्रसादी प्रभ अरादे जम कंकर किछ ना कही, मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा पंडार, जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार, दुख दर्द कलेश बिनसे जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे, रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह, आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार, सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार, अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन कोट दान स्नान, बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास, बिसर नाही निमख मन ते नानक की अरदास, मारू मेला पंजवा।

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर ने व्यापैखने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्वजी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्वथान समान, जहां सा किछ ता लागयो तिल न शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विद तिसे प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभु की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजा।

दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना। नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना। मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ। पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना। पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना। पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना। बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना। मात्या हर रस में राते तिस बहुर न कबहू औखीवना। मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना। सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता। दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला पालिए। ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही में जो रहे अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिए। जागत सूता परम विगूता बिन गुरमुक्त ना होइए मीता। साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए। कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा। गुर प्रसाद सुख दुख समझाने कट कट राम हे आलिए। संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे। जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए। छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचे तो पौ मन माही। किस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होय मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना। नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त उदोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानिया। पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे। दो जग पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पया बेबा माल जोबन तन चोड़ वजे सा। करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया। खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्मे। जिनकी तात से ना जानी अंदा ता दुख सह प्राणिया। खालक थावो पुल्ला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा। सिदक सबूरी संत ना मिलियो वत्ते आपन पानिया। मौला खेल

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाए पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान ध्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवला।

आपे पावरफुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

सबद सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, जोदी सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने स्यों लूजे। जो तुझ सेवे से तुझ ही जे है, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला। जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप ना रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद ना जाता, ना किस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पहु जाई है, फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दीसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांति पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, 68 अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैर आई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना कमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या काला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है, होर के ती दर्दी से बिललांदी, मैं गणत ना वै काई है, साची कीरत साची बाणी, होर नदी से वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है, जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखू लिवलाई है, मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, बिन फिर नींद न पाई है, अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तक के कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ बढ़ाई है, काम क्रोध अंकार निवारे, तत्सर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे, मन सामने समाई है, माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है, तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी क्या

आवत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन तंदे लाया, सच्चे ऊपर

बाजीगर जो निस सुपने पखलाई है तिनको तख्त मिली वड्याई निरपो मन वस्या लिव लाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभुवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साथ मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हौ मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जी है क्यों सुख पावे दुए पी है निर्मल एक निरंजन दाता गुर पूरे ते पत पाई है जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल न काई है जीव रसायन साचे राती हर प्रभ संगी पौ ना पराती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है रख रख पैर तरे पौ तरना जत कप देखो तेरी सरना दुख सुख दे।

नानक नाम रते बैरागी। निज कर तारी लाई है मारू महला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे साचे।

सच नाम सच्ची वड्याई साचे तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते जहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेते धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे ना

कर्म कर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सह समाए, त्रिभवन ज्योत करी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई।

की लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगे पैदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बित्रे दुख पाई है। भोजन साच मिले।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प।

वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो किछ करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाए है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे, राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाय है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत एह बड़ाई है। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करे पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पर आई है। ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है। बूजो हर जन सतगुर बाणी, जिह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूर कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाहारा, साकत कूर पचे मन हो मैं,

सुनाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हों मैं तंद छोड़ो लंकटाई। सतगुरु शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यो तिस पाना तिवै चलाए, तिसे सरीत न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूझे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए विणनावे गत गया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिले ता सोजी होई बिन गुर बजर कपाट न कूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन सीजे देही राम न जपई अंत स्नेही नाम विसार चले मुह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मारा है खाजे पैजे रली करीजे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त पराए।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुर पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाहे मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ

कूकर सूकर कहीं है कूड़ियारा, पौक मरे पौ पौ पौहारा, मनसा चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परेके, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है। राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है। मारू मेला पहला कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, एनस राम रहो रंग राते, यो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लैचीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत के हो निस्तारा है। साकत पूर कपट मह टेका, हैनत निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, सिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। हों में ममता करदा आया, आसा मन सा बंद चलाया, मेरी मेरी करत क्या ले चाले, बिखला दे चार बिकारा है। हर की पगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती, नानक राम नाम।

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे लेवे आपे देवे, त्यो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल।

आला कोई गुरमुख बूझे सबद निराला साकत दुरमत डूबे दाजे गुर राखे हर लिव राता है अब तेज वाए पृथ्वी आकाशा दिन में पंच तत् करवासा सतगुर शब्द रहे रंग राता तज माया हो मैं प्राता है इव मन पी जय शब्द पति जय बिन नावे क्या टेक टिकी जय अंतर चोर मुह कर मंदर इन साकत दूत न जाता है दुंदर दूत पूत पिहाले किंचो तान करें बेताले।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे, जिन कर चतर करे विचारे आपे करता कर

बिन मुक्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़े मन मुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझे परम पुलाना।

पराख है, जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरुमुख सब चलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ति बाणी, सुन कही है को अंत न जाने, जा को अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे तिस्थर पर मरना, कृत पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख सुख ही ते पे निराले, गुरुमुख सील सनाहा है। नीचे साचे के व्यापारी, सच सौदा ले गुर विचारी, सच्चा वखर जिस तन पल्ले, शब्द सचै ओ माहा है। काची सौदी तोता आवे, गुरुमुख वणज करे प्रभ पावे, पूंजी साबत रात सलामत, चूका जम का फाहा है। सबको बोले आपन पाने, मन मुख दूजे बोल न जाने, अंधले की मत अंधली बोली, आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

डाल छोड़ तत्मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे। राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। ओढ़ न कथने सिफ सजा।

नानक साथ मिले पत राखो, तू सिर साहा पातशाह है, मारू मैला पहला दखनी, ताया नगर नगर गर अंदर, साचा वासा पुर गगन अंदर, अस्थिर थान सदा निर्माइल, आपे आप उपाएंदा, अंदर कोट छजे हट नाले, आपे ले वे वस समाले, बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर सब्दी खोलाएंदा, पीतर कोट गुफा कर जाई, नौ कर खापे हुक्म रजाई, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाएंदा, पौन पानी अग्नि इकवासा, आपे की तो खेल तमाशा, बल्दी जल निवरे कृपाते, आपे जल निद पाएंदा, तर्क उपाय तरी धर्मशाला, उत्पत पर लो आप निराला, पौने खेल किया सब खाई, कला किंच टहाएंदा, तार अठारे मालन तेरी, चौर तुले पवने ले फेरी, चंद सूरज दो दीप कराखे, सत कर सूर समाएंदा, पंखी पंच उडर नहीं तावे, सफल्यो बिरख अमृत फल पावे, गुरमुख सहज रवे गुण गावे, हर रस चोग चुगाएंदा, तिल मिल चिल के चंद न तारा, सूरज किरण न बिजल गैनारा, अकत्ती कथो चेन नहीं कोई, पूर रहा मन पाएंदा, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अनहद रुण चुनकार सदा सुन, निरपौ के करवाएंदा, अनहद वाजे परम पौ पाजे, सगल व्याप रहा प्रभ छाजे, सब तेरी तू गुरमुख जाता, दरसो है गुण गाएंदा, आप निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई, एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, वे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएगा, आपे देख दिखावे, आपे आपे थाप उठापे, आपे आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएगा। जेती है तेती तुद अंदर, देखे आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाएगा। मारू महला पहला, दर्शन पावा जे तुद पावा, पाए भगत साचे गुण गावा, तुद पाने तू पावे करते, आपे रसन रसाएंदा। सोहन भगत प्रभु दरबारे, मुक्त पए हर दास तुम्हारे, आप गवाए तेरे।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप दनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सबाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेख्या मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधित साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपे साच जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे सबद प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड़ा वड़ा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरु विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओपत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं।

ममता जाल काल नहीं माथे, ना को किसे त्याएंदा, निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो, ना तद गोरख ना माचिंदो, ना तद ज्ञान त्यान कुल ओपत, ना को गणत गणाएंदा, वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री, देव ना देहोरा

को शेख मसाई कहा जी रैयत राव न हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण।

मैला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हार है दसवें वासा अलख अपार है सायर सप्त परे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंदा रव सच दीपक जोत सबाई आपे कर वेखे वडियाई जोत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोभा पाएंदा गर्म है हाट पटन वापा।

पूरे पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा।

पूरा सतगुरु हृदय मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाणे, माने हुकम समाए दा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया। हुक्मे सुग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग। हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी। हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा। हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा। माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे। आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा। काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा। मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा। सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी। नानक सहज मिले जग जीवन, गुर शब्दी पत पाएदा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी। आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे। सुनो सुन उपाएदा, कौन पानी सुने के साजे। श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अग्न पानी जियो जोत तुम्हारी। सुनने कला रहाएदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा। इस मिलिए परम चुकाएदा, सुनो सपत सरोवर खापे। जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे। फिर बहुर जोन न पाएदा, सुनो चंद सूरज गैनारे। किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम। सुनने ताड़ी लाएदा, सुनो तरत आकाश उपाए। जिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया। आप उपाय खपाएदा, सुनो खाणी सुनो बाणी। सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सुर करते। विस्माद शब्द देखाएदा, सुनो रात दिन सदोय किए। ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता। गुरमुख निज कर पाएदा, साम वेद ऋग जुजर असर बन। ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण, ताकि कीमत कह न सके को। त्यों बोले ज्यों बोलाएदा, सुनो सप्त पताल उपाय। सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर। सब तेरो किया कमाएदा, राज्य तम सत कल तेरी छाया। जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनों कृपा करे हर गुरुमुख। गुण

अंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाएदा पंच तत् सुनो परिदासा दे संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा पला दोय मस्तक लीखे पाप पुन भी जाएदा उत्तम सतगुरु पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये पूरे पाग मिलाएदा इस मन माया को निहु कनेरा कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा आशा मनसा।

गुर ज्ञान रतन दीपाया, पंच तत् मिल ए तन किया, आत्म राम पाए सुखतिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रह निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोजी होई, काया गर महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बिचाखी, अंतर वस्त्र अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बहे तख्त की लायक, पंच समाये गुरमत पायक, आज जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवे दिन राती, क्यों साथ वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, मारू मैला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजे शब्द जगाया, तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवारे जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर स्थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसें

में पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुकुम चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष सुजाना अगल करे गुरु ज्ञान समाना काम क्रोध ले गर्दन मारे हो मैं लोभ चुकाया सच्चे थान वसे निरंकारा आप पछाने सब विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले न पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाहद वावे पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभ तारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसै ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जग पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव करिए, अकल गाए जम से क्या डरिए, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कठ है देख है अपरंपर, कुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत्संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमत ले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत ले हो तरह पग दुतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत ले हो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरह सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साए काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया।

हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, ऐनस ज्योत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरे देखाया। सतगुर मिलो आपे प्रभु तारे, सब कर सूर दीपक गहनारे, देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दी जय, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन ते तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाये, बहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ये पौजल जगत शब्द गुर तरिये, अंतर की दुबदा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे, गगन अंतर तनक चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुरु है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ को सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुरु जाने, सो निरपौ गुरु शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया, एनस नाम निरंजन रसया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बार सो प्रभु जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्व तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम त्याए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तंते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गए जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गए गत पत पाए, साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सत गुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, विख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर से वो संत न की जय, आशा माए निराश रही जय, संसार दुख बिना सन से वो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया, वाचे है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया, करें विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में, पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया, तीरथ वर्त नेम करें उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुर परम न जाया, न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पाखंड तरम प्रीत नहीं।

नानक आत्म राम सभाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाय, कर कर वेखे अपनी वड्याई, आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा, आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले देवड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई, मनमुख बहुत सुरे दिलांदी, दूजे पाए खुआई है। हौ मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई, गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुरु सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए, अंतर प्यार पगति राता, सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरुमुख

ले संसारा जल जल खपे बहुत विकारा मन मुख थोर न पाए कबहू सतगुरु बूझ बुझाई है सतगुरु सेवन सेवड पागी साचे नाम सदा लिव लागी अंतर नाम रविया ने केवल कृष्णा शब्द बुझाई है सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरले किने पछाणी सच्चे शब्द रते बैरागी आवन जान रहाई है शब्द बुझे सो मैल चुकाए निर्मल नाम वसे मन आए सतगुरु अपना सद ही सेवे हो मैं विच्चों जाई है गुर ते बूझे तांदर सूझे नाम विहूणा कत कत लूझे सतगुरु सेवे की वड्याई कृष्णा फूक गवाई है आपे आप मिले ता बूझे ज्ञान विहूणा किछु न सूझे गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द वजाई है जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर ना कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर ना होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अन दिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत ना होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुख दाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

मिल प्रीतम सुख होई है, मन मुख तात दूजा है लागा, जन्मत की नाम वो अपागा, आवत जात बिरसा जन्म गवाया, बिन गुरु मुक्त ना होई है, काया कुसुद हो मैं मल लाई, जे सो तो वै ता मैल न जाई, सब तो पै ता अच्छी हो वै, फिर मैली मूल ना होई है, पंच दूत काया संगार है, मर मर जम में शब्द ना विचार है, अंतर माया मोह गुबारा, जो सुपने शुद्ध ना होई है, एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलिया वड पागे, अंतर साथ रहे रंग राते, सहज समावे सोई है, गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक शब्द जापे, सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रसा कह सच सोई है, हम मैं मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, एक बिन हों होर ना जाना, सहजे होए सो होई है, बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, हों मैं शब्दे खोई है, आपे गुणदाता बिचारी, गुरमुख देवे पक्की सारी, नानक नाम समावे सच।

सात से ते पत होए हे मारु महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता गुरु सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पथ साही जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रति गुण गावे दर्शा चै पथ पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई मनमुख निंदक पट

मन पीवे पाए सुवाई है। पर पंडित अवरा समझाए पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाए, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तय पाए भगत चित लाई है।

सच्चा शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम ना पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है, एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है, स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है, आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है, सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है, जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है, हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जब मैं दूजा पाया, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है, जो तिस पावे सोई करसी, आपो हुआ ना किछ होसी, नानक नाम मिले वड्याई, दरसा कै पत पाई है, मारू महला तीजा, जो आया सो सबको जासी, दूजे पाए बांदा जम फासी, सतगुरु राखे से जन उबरे, साचे साथ समाई है, आपे करता कर कर वेखे, जिसनो नदर करे सोई जन लेखे, गुरमुख ज्ञान किस सब किस पूजे, अज्ञानी अंध कमाई है, मन मुख सहसा बूझ न पाई, मर मर जम मैं जन्म गवाई, गुरमुख नाम रते सुख पाया, सहजे साज समाई है, संदे तावत मन पया मनूरा, सिर होवे कंचन पेटे गुरपूरा, आपे बख्श ले सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है, दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, अवगणियारी अवगणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है, अवगणियारी कंस न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, सिर का साव न जाने मूरख, बिन गुरबूझ न पाई है, दुर्मत खोटी खोट कमावे, सिगार करे फिर खत्म ना पावे, गुणवंती सदा पिर रावे, सदगुर मेल मिलाई है, आपे हुक्म करे सब वेखे, इकना बख्श ले तुर लेखे, अंदिन नाम रते सच पाया, आपे मेल मिलाई है, हूँ मैं तात मुह रस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई, आपे मेल है आपे कर वेखे, बिन सतगुर बूझ न पाई है, एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोह सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किछु न जाई है, काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, सतगुरु सेवा के सुख पाया, हर के नाम समाई है, दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोह दुख माए समानी, बहुते पेख करे नह पाए, बिन सतगुरु सुख न पाई है, किसनो कही है जा आप कराए, जित पावे तित राह चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता, ज्यो पावे तिह चलाई है, आपे करता आपे पुगता, आपे संजम आपे जुगता, आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन, जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है, सेवड पागी जिन्नी एको जाता, कट कट वस रहा जग जीवन दाता, एक है गुप्त प्रगट है आपे, गुरमुख परम पहु जाई है, गुरमुख हर जियो एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता, जिस तू दे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है, मारू महला तीजा, सत्साला ही गहर गंभीर है, सब जग है तिस ही कैचीर है, सब कट भोग वे सदा दिन राती, आपे सुख निवासी है, सच्चा साहिब सच्ची नाही, गुर प्रसादी मन वसाई, आपे आए वस्या कट अंतर, टूटी जम की फांसी है, किस सेवी तै किस सलाही, सतगुर सेवी शब्द सलाही, सच्चे शब्द सदा मत उत्तम, अंतर कमल प्रगासी है, देही काची कागद मिकदारा, बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा,
कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा। सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अनदिन जागे। साचा सूख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है। हर नाम चेता अवरना पूजा एक तो सेवी अवरना दूजा। पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। परम परम जोनी फिर आया आप पूला जा सतम पुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी। डुबदे पात्र मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा। आपे बस लें सुख पाए सभी नाम निवासी है। कीर्तन तरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज अपारा। सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणया रे नो गुण की जय आपे बस लें नाम दी जय। गुरमुख होवे सो पत पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ ना होई गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई माया मो सुध न काई। मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न संभाले अंत विगूते। पर निंदा करें बो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख देव बुझाई। नानक नाम रते।

आपे लाए ले जग जीवन दाता, खापे बख्शे दे वड्याई, गुरमत एव मन पी जय है, माया लहर शब्द निवारी, एव मन निर्मल हो मैं मारी, सहजे गुण गावे रंग राता, रसना राम रवि जय है, मेरी मेरी करत विहानी, मन मुख ना बूझे फिर आणी, जम काल कड़ी मौत नि

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमति हर नाम पी जाए, सब नाम विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौं मैं मार सदा सुख पाया, नाए साचै अमृत पी जाए, किल विख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किश आपे आप वरतै, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर भगत न होई, गुरमुख भगत सांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूझे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख बखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अव

सच्चे सच्चा सत रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे कोई चारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है। माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जहाँ सुध पाया सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखाने वारी है। माया मोह

कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवे सच त्यावे, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, अंदिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होवा, गुर की सेव प्यारी है, से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है, हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खसम लिख पाया, गुर साचे ते साच कमावे, साचे दुख निवारी है, जा तू देह सदा सुख पाए, साचे सब दे साच कमाए, अंदर साचा मन तन साचा।

पहला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्ते एक प्रछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह सबद पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक स्नेह प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद।

इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रहे रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरुमुख एक को जाता है, जिसनो नदर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सो ले तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंक सब तेरी सरना, आपे गुप्त वर्ते सब अंतर, गुर के शब्द पछाता है, हर के भगत परे पंडारा, आपे

कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके फेरी। साचे गुण गावे दिन राती, जुग जुग एक हो जाता है। माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया। जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुन वर्ते संसारा, हर्ष सोग सब दुख है पारा। गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै सबदे मोख द्वारा। पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है। हर कै पाने हर गुण गाए, सब किल विकाटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है। मेरा प्रभु निर्मल अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा। आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है। मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा। हो मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है। गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा। गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हम मैं मार पछाता है। रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा। गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा। मूर्ख परे शब्द न बूझे, गुरमुख विरले जाता है। आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए। नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एक हो जाता है। मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा। सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वरताए। एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे। नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए। सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे। इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करे पर आप पछाणे। एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे। पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए। विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे। काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे। माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे। जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए। गुरमती नाम मन वसाए, अंदिर नाम त्याए साचा। इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई। गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है। तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुणदाता। लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा। अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी। गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई। एको नाम मन वसाई, नाम जपी ते नाम त्याई। महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुकम अपारा। मन मुख हुकम न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई। हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने। तावत राखे इक

होई सबद सलाह है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे।

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रविया कत अंतर शब्द सच्चा ओ माहे। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता शब्दे मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रह इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काड लेगा सहा है। अफ्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर।

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मत साहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन लेन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सो है दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा सब सुनाए, हम दिन भगत करो लिव लाए। हर गुण गावे सद ही निर्मल।

सतगुर पूरा साच दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब देशे वै सो जंत्रा पै, अंदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हट कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लब लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल बिछोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सबदे सेवन

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल बिकसे बुद्ध कहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन।

गुर कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसे कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बच्चे शब्द मिलाए, परमल वास।

कहो मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुरु सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सब तुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

होवे संयोग वियोग करते लिख पाए कीर्तना चले चलाहा है जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए हास्यो सद ही रह समाए गुर कृपा से मिले वड्याई होमे रोग ना ताहा है रस रस खाए पिंड वधाए एक करे गुर शब्द ना कमाए अंतर रोग महा दुख पारी बिस्ता माए समाहा है वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने कट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने गुरमुख होवे सो तत बिलोवे रसना हर रस्ता है सार वस छोड़े बाहर तावे मन मुख अंधे साध न पावे अन रस राती रसना फीकी बोले हर रस मूल न ताहा है मन मुख देही परम पतारो दुर्मत मरे नित होए खुआरो काम क्रोध मन दूजे लाया सुपने सुख न ताहा है कंचन देही शब्द पतारो आम दिन पोग पोगे हर्षों प्यारो महला अंदर गैर महल पाए पाना बुझ समाहा है आपे देवे देवन हारा किस आगे नहीं किसे का चारा आपे बक्के सब

गुरुमुख हो वह सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो समकर जाने सो मेरे प्रभु पाएंदा।

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकारा।

जिस विच रव्या शब्द अपारा गुरमुख गावे सदा गुण साचे मिल प्रीतम सुख पाएदा काया हर मंदर हर आप सवारे तिस विच हर जियो वसै मुरारे गुर कै शब्द वणजन वापारी नगरी आप मिलाएदा सो सूचा जे क्रोध निवारे सबदे बूजे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन तन सोवे शब्द विचारी अन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएदा इस मन मंदिर में मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पे ते ठौर न पावे आपे खेल कराएदा आप अपरंपर आप विचारी आपे मेले करनी सारी क्या को कार करे बेचारा आपे बख्श मिलाएदा आपे सतगुरु मेले पूरा सच्चे शब्द महा

कछ अंतर रसना नाम से आएंदा जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले माया मोह बद्दा जम काले जम की फांसी कब होना टूटे दूजे पाए परमाएंदा जब तब संजम होर कोई नाही जब लग गुर का शब्द ना कमाही गुर के शब्द मिलिया सच पाया सच्चे सच समाएंदा काम क्रोध सबल संसारा बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा सतगुर सेवे से सुख पावे सच्चे शब्द मिलाएंदा पौन पानी है बेसंतर माया मोह वर्ते सब अंतर जिनकी ते जांच से पछाने माया मोह चुकाएंदा इक माया मोह गर्भ व्यापे हो मैं होए रहे हैं आपे जमका ले की खबर ना पाई अंत गए।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आंख बखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाएंदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएंदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न कमाए वे परवाहा, जिसनो अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किछ करे सो नहीं चोई, जिस बिन दाता वरना कोई, जिसनो नाम दान

को पाएगा। सतगुरु सेवे सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएगा। सतगुरु ते बिछड़े तिन्नी दुख पाया, हम दिन मारिये दुख सबाया, मत्थे काले महल न पावे, दुख ही विच दुख पाएगा। सतगुरु सेवे सेवड़ पागी,

का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएंदा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा लेवे जो तिल कानी पीड़ाएंदा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएंदा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान

मन्ने सोमिले तुदाए। जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराए दा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाय, जितनो पाना दे तिस पाए दा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कभू पाए दा, सतगुरु मेले दे वड्याई।

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही ते रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर कह शब्द सच चित लाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नामे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा

जिन्नी ना पाया सेवड पागी गुर कै शब्द मिलाएगा काया कोट अत अपारा तिस विच बह प्रभ करे विचारा सच्चा न्याओ सचो वापारा निचल वासा पाएगा अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विर लैकने थान पाया इस साथ निभ है साला है सच्चे हर सच्चा।

इहो शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पाजा गुर

वेद पढ़े अंधिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएंदा, गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविद मनसा मने समाए, साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा, जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते, सतगुर सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएंदा, माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए, सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जांदे बिलम न लाएंदा, इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए, पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा, मन मुख बहुत करे अभिमान, दरगह कभी न पावे मान, दूजे लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएंदा, मेरे प्रभ अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएंदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएंदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएंदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएंदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएंदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएंदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सकै तिसनो, गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवै जो तुद पावै, गुर कै शब्दे सच समावै, अन दिन गुण रवै दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौं मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को हुआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवे करें अरदास तू आपे मेल बहा ले पास। सबना जिया का सुखदाता पूरे कर्म ते आया। जत सत संजम जे सच कमावे यह मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

भगत सराहन सदा लिवलाए, तौ शरणाई उबरे करते आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया, हऊ मैं विच सब जलै शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए, जम का जेवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया, आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उधारे, गुर कै शब्द मरे मन मारे हऊ मैं जाए समाया, आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई, अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया, पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा, सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माहे समाया, करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे।

सतगुर प्रसाद। सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजी कारा, गुरमुख सच वसै कट अंतर, सहजे सच समाई है, सबना सच वसै मन माही, गुर प्रसादी सहज समाई, गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चित लाई है, सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर न दूजा, सतगुर ते नाम रतन तन पाया, सतगुर की सेवा पाई है, बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवे जाए परम मरे अपागे, नानक तिन की फिर गत होवे, जी गुरमुख रहे शरणाई है, गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची, ओ दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर शरणाई है, अमृत रस सतगुरु चुआया, दसवें द्वार प्रगट होए आया, तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहजे सहज समाई है, जिनको करते तुर लिख पाई, अंग दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजे नाही, गुर चरणी चित लाई है, जिस पावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले, आपे कृपा करे नाम देवे, नानक नाम समाई है, ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया, ए वड्याई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है, प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अतपारी, कर्म मिले सुख पाई है, गुरुमुख नाम प्रगटी है सोए, चौ जुग निर्मल हच्छा लोए, नाम में नाम रते सुख पाया।

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख बखानी। हर हर करत सदा मन बिगसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता

सतगुरु मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्बे रव रहा कटवासी।

जन नानक नाम जपो पव खंडन, सुख सहजे रहन विहानी है, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण परे

पह करते हर अंदिन नाम वखानी है। किसी जोर अंकार बोलन का, किसी जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तर अवरना काई, तू करते राख मैं निमानी है। निमाने मान

हर हर नाम जिन्हि सदा ते आया, तिन्हि गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप।

थान थन अंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग

बंधन तोड़ लिए प्रभु मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन साची कार कमाई है, मन प्रतीत बनी प्रभु तेरी।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पै इकतरा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन।

पीतर जित उतरे भूख प्यासा है सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

वचन दे छोड़ ना जा साहे। फिर कया हौ हुक्मी बंदा, ओ पारो ठाकुर जिस कान न चंदा, जिचर राखे तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिदा साहे। जो प्रेह बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

बिन सतगुर पच मुए साकत निगुरे गल जम फासा है। मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे। जितने नरक से मन मुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया।

सुरत सबद रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फासे, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जा।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले न जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी तैं आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किच करे सो आपन पाने, साधु तूर जाचे जन तेरे ना।

तिथे हर त्याय सारंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगमा था, क्यों मिलिए प्रभे परवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाए दा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाए दा, तू आपे करता कारण करना।

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक त्रिपत अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होवन हारा ऊंचा अगम अथा।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

पूजै सतगुरु साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायणा जांकी तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार परायणा पार जात लोड़ै मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच धातु पै पार ब्रह्म होवे।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आगे, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संत संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे दर्शन।

सिमरै सगले हर जना, सिमरै ब्रह्मे बिशन महेशा, सिमरै देवते कोड़ तेतीसा, सिमरै जक्ष दैत सब सिमरै, अगनत ना जाई जस गना, सिमरै पश पंखी सब पूता, सिमरै बन पर्वत अवधूता, लता बलि साख सब सिमरै, रव रहया स्वामी सब मना, सिमरै थूल सूखम सब जनता, सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता, गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे, सगल पवन

परम रुना गुरु का शब्द वसे मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांचै जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी। निव निव पाए

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही।

सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है ना ही किछ असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तुद पाणा से कर्म कमाए तुझते बाहर किछु ना हुआ।

अत तुम पारा इक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा इक ना पार लंगावे आपे सतगुरु जिन का सच बेड़ा कौतक काल एहो हुकम पठाया जी जंत उपाय समाया वेखे विकसे सब रंग माने रचन की ना इक आखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड्डा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया।

गंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जियो असर संगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण

तुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी सेख अंत ना जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पए शरणाई, देहो

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जा

नमस्कार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्प तरी सब आ गए, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे। सास ग्रास समाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग पज अचुत स्वामी, दरगे शोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद। सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा। सासत सिमरत वेद बखान।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल

पूरे परदाना हर से ती सदा मिल रहे जिन्नी आप पछाना ज्ञानिया का यो महत है मन माए समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्ह जिताना। श्लोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या ले दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल मैला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेव्यो ना कोय ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड़ अवर ना कोय तिस सरनाई छूटी है लेखा मंगे न कोय सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावे हर जियो अंकार।

नानक जे इव मारिए गुरसब दी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर शरणाई छुटी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला। हुकुम

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी।

तिन जम डांड ना लगे जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदै लागे। श्लोक महला पहला। सर्वे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आत कालर लादस सर लागनो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला। पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार नानक वखर निर्...

नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नवनिध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला। पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोए महला पहला। सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे प्रभाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे। श्लोक महला पहला। सुनिए एक वखाणी है सुर्ग मृत पयाल हुक्म न जाई मेट

मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवै जानिए सब किछ तिसैर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही, बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे गुर सब छुटाही, आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक में ला तीजा, इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए, जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए, अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए, सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए, सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए। मैला तीजा, जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवरना कोए, खाना शब्द चंगियाया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए, सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापे, हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे, अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे, हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे। श्लोक मैला तीजा, लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण

महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप की ते करतार नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब जी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे कर...

ताओ सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ अमृत का रस आया मन वस्या नाओ श्लोक मैला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही तू हो मैं हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ये अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे आप गया प्रम पो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाये उत्तम मत तराहे नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन किसे समाहे महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए कल युग विच संसार आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे पौ जल विखम संसार पौड़ी मनमुख अंदर न पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सासत न सोदनी मनमुख विगुते बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते तत ज्ञान विचारे।

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाने जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागती जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल

अंदर सुख न होवई मन मुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित पावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा। गुरमुख सदा सलाहिए सब तिस दे जचा, जो नानक आप नचा।

देख कपड़ भोग डरावने जे चरपी न देख महला पंजवा उठी झालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह हो जिस मिल की चै भोग। पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

होर तो पाए न लभई अब नासे श्रेष्ठ करण दखने महला पंजवा। जे तू वत्तै अंगने हब तरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी बात न पुछे को।

आपे सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किछ वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम।

जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारया एव हर पाइया एक विचों ही तुद रखया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

सजन मैंडा चाहिया हब कही दा मित, हबे जानन अपना कही न ठाहे चित। महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल।

कौड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबे पापे, जन्म जन्म की मल उतरे गुर धूड़ी नापे। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापे, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपे। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापे, सब अंतर जनवरता।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना। जित डाढ़ी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ डाढ़ी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाढ़ी।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म तीरा कर अंधरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोत ना।

जान चंद्र बानगरी सुख घटाओ दोए इस पंधानु घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख लेखं खड़ दर्शन ब्रह्म से सिर न मिली है भेखं वर्त करे चंद्रायणा से कुत न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न देखं तिलक कढ़े स्नान कर अंतर का लेखं देखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवार आया अपना जिन गुरु अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहु गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार कुड़ावी छड सम्मल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुहावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दर गय मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देखना पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिर निकामी मन रत्ता कुटम स्यो नित गर्भ फिरामी फिर गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए बिलामी विचर दे फिर संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुरु पाया हर मिलया स्वामी जो जन हर का सेव को हर किसकी कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाणंदो कोए नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यो महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया महला पंजवा मतड़ी कांड कुआ पाव धोवंदो पीवसा मूतन प्रेम अथा पसन को सच्चा धनी पौड़ी निर्भव नाम विसारिया नाल माया रचा आवे जाय भवाई है बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खच्चा वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह वेग धुर कर मचा जमदूती है हेरिया दुख ही मैं पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखने महला पंजवा परबाते प्रभ नाम जप गुरु के चरण ध्याए जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए महला पंजवा।

करीब मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाए का सब भी उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक डखने महला पंजवा जो दुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निरो भी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथा

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन गुरन घटा अत कालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सुहंदिया महला पंजवा जल थल नीर परे शीतल पवन झुलार दे सेगड़िया सोयन हीरे लाल जड़न दिया सुबर कपड़ भोग नानक पिरी विहूनी तत्तिया पौड़ी कारण करता है जो किया सोई है करना जे सौ ताम है प्राणिया पाव है धुर लेना बिन कर्मा किसु न लभई जे फिर सब धरना गुर मिल पो गोविंद का भय डर दूर करना बैते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म न मरना ज्याय कमाए ज्याया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रुगत समाहे सब सह क्या

गेराव। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर छापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भसम लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया।

राम उदग दे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

है कभी मन मानिया। जिनगढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण, काहे की जत है मन पावन। जब जम आए केस ते पकड़े,

बिन गए अनुभव होए बना हम बे सौ अधूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े हुक्म बूझे ता निर्भो होए बना हम बे।

रामदेव जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद। चार मुकत चार सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो, जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो, गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत, जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद, राज भीकन अधिक करयो। नौ निध ठाकुर दई सुदा मैं, धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस, नरसिंह रूप होय देत हर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारो रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंध है झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ। आपस को दीर

काम निंदा करते जन्म सिरानो कभु न सिमरो राम। कह कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुगध गवार राम नाम जान।

चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत थोड़ सादत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपया अघड़ घड़िया तहां अप्यो पिया मन आद गुण आद वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया रहाओ अर्ज को अर्जया सरद को सरदया सलल को सल सम्मान आया बदत जय देव।

काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम बुलाएगा, धन जो बन का गर्व न की जय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन

हर पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कह, हर हर हर न जपस रसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे, व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत होए बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सबरस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बानी सासो हा गण नारे। नवघर थाप मैल घर ऊंचो।

नानक जेठ जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तप है, धरती दुख सह सुख है अगन पक्ष है। अगन रस सुख है मरी है चोख है, भी सो किरत नहारे। रस फिर छाया धन काते, टीन लवे मन पारे। अवगुण बाद चले दुख आ गए, सुख तिन साथ संभाले। नानक जिसनो यो मन दिया, मरण जीवन सब नाले। सावन सरस मना घन वर्ष रुत आए, मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए। फिर घर नहीं आवे मरिए हावे, दामन चमक डराए। सेठ इके ली खरी दुहेली, मरण पया दुख मा।

जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसै निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवै बबीहा, बोले भुयंगम फिर डसंते। मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रब तै ही जाइए। असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, ता मिली है प्रभ मेले दूजे पाए हुई। झूठ विभूति ता फिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले। दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचै सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा। कतर किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया। दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मर न सीजै गुण मारी ता मरसी। नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा। मंगर माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे। नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने ता पाया। गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे। ओख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख, आवत की नाही मंतन वसे मुखे। मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धीरंग मानी, अंडर जीरज सूतज उद्भुज गट गट जोत समानी। दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो। माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके, सुर पावा सरनावा। गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुन्द समावा। पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता। फल गुण मन रहती प्रेम सुभाया, अनदिन रस बया आप गवाया। मन मोह चुकाया जा तिस पाया, कर कृपा घर आओ। बहुते वेत करे फिर बाजो मैली दान खाओ। हार डोर रस पाठ पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी। वेद असमार रुती छिती वार भले, घड़ी मूरत पर साई।

राखो खेती हर गुर हेती, जागर चोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख ध्यावे। नानक मूर्ख अज

सच संभालिया ऐन सदेश बिचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़िया लम्मा गुरमुख जाग रहे चूकी अभमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुग परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रहा अवर न दिया राम रव रहा सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया सो कब गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिबद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे तेई अड़े घर सबद पति नी सावरड़ा तेर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल कछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगुण मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

राती मिला मिलाई मन मुख आवन जानी। जमुना की कब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी। नानक आप आप पछाने गुरमुख तत् बिचारी। सुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले। गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभु कृपा तारी। जग जीवन दाता पुरुष विदाता सहज मिले बनवारी। नगर करे तू तारे करिए सच देवो दीन दयाला। प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला। भरपूर धार

नित देवै चढ़ै सवाया, अपरंपर आपे था पोथा पे तिस भावै सो होवै। नानक हीरा हीरै बेदया गुण कै हार परोवै, गुण गुणे समाने मस्तक नाम निशानो, सच साच समाया चूका आवन जानो। सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावै, साचे ऊपर अवर न दिसै साचे साच समावै। मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे, नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे। सच दर खोज ले साचा गुर थानो, मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो। देवै सजदानो सो परवानो, सजदाता वडदाना, अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना। दो तू चापत लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी, नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी। तुखारी महला पहला, ए मन मेरिया तू समझ अतीत आनिया राम, ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समानिया राम। बहु साधु लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला, क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला। मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगुण।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है, इस दिन रह न जा।

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै हर देवे ता नाम ते आविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी तिस लेखा सब छडाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कई है तिन मस्तक भाग तुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे ज्यो सुत मिल मात गल लाविए रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे मोको देहो मती जित हर पाविए रे। ज्यो बछरा देख गऊ सुख माने त्यों नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो। इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखे रस इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजे हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी हर संतन की कूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी प्रे रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी प्यास बिदानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो नानक प्रिय अमृत बानी। खिलारा महला पंजवा कर कीजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। दीन बिनो सुन दयाल पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल रहाओ अनिक जतन गवन करो खट कर्म जुगत ध्यान करो। उपाव सगल कर हारियो नह नह हुते बिकराल। शरण बंदन करुणा पते पाव हरण हर हर हर हरे। एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो। उदरे प्रम मोह सागर लग संतना पग पाल। किदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। सरनी आयो नाथ निधान नाम प्रीत लागी मन पीतर मांगन कौ हर दान। रहाओ सुखदाई पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान। देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान। नानक को हर कै रंग रागो चरण कमल संग ध्यान। केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो कर कृपा सत्संग मिलाओ। तुम देवो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सतपुरुष प्यारे। जब सुनिए तत मन रहसाओ वारी फेरी सदा कुमाई। कवन अनूप से रोठाओ सर्व प्रतपाले सगल संभाले सगलिया तेरी छाओ। नानक के प्रभ पुरुष विधाते कट कट तुझे दिखाओ। किदारा महला पंजवा

फूले कपट तपट बुध तृष्णा, जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा, सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक, संते संग उधारी किरारा महला पंजवा, हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे, अपना नाम जपावो रहाओ, काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो, तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो, सबकी रेन होए मन मेरा अहंग बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दयाला वड पागी नानक हर पावो, किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात, तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात, रहाओ तन जोबन संपे सुख पोगवे संग न निभत मात, मिर्ग तृष्णा देख रचियो बावर द्रुम छाया रंग रात, मान मोह महा मद मोहत काम क्रोध के खात, कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ, केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ, दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ, राव सुत

करण समरथ अटत अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बासत मिले लिखत तुर मात खिलारा मैला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखे जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी चिदारा महला पन्यवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ ना

आओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापै संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह।

तृप्त होए सिमरै तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार। नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार। किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत। जीवन रूप विसार जीवें ते कत जीवन होत रहाओ। खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत। आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत। तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत। कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत। किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली। गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव। गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली। प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली। जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली। प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे। कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ। संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे। रेन जन की लगी मस्तक अनेक तीरथ सुचे। चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय। शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्योहारी, साची बस के तार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी, आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो, मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार।

आई। जेते कट अमृत सभी मैं पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवां दर फूले तामन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी।

राम न जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल न दूरे, अनित जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी, जात पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद ए बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारथ जाए। राग किदारा बाणी रविदास जियो की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते कह पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौप दे।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर्कु तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम निवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुरु मेल मिलाए जब लग शब्द पेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबू न जानस एक को दर्श प्यारा गुरु प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो सात रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाईए अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाईए मन रे राम भगत चितलाईए गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटस आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटस गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पकारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लहै।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा। इस गर्व से चले बहुत विकार आ रहा, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

खिन में बिन से करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुरु कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए। पैरों महला तीजा, मैं कामन मेरा कंत करतार, जिहा कराए तेहा करी सिगार।

दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारण हारा, गुरु प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम ना चे

नानक हृदय नाम वसाए पैरों महला तीजा नामे उदरे सब जितने लो गुरमुख जिना प्राप्त होए हर जियो अपनी कृपा करे गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ राम नाम जिन प्रीत प्यार आप उदरे सब कुल उदाहरण हार बिन नामे मनमुख जम पुर जाए औखे होवे चोटा खाए आपे करता देवे सोए नानक नाम प्राप्त होए पैरों महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द विचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ अंतर प्रीत पगत साची होए पूरे गुर में लावा होए निज कर वसे सहज सुभाए गुरमुख नाम वसे मन आए आपे वेखे वेखन हार नानक नाम रखो उधार पैरों महला तीजा कल युग में राम नाम उधार बिन नामे माथे पावे चार राम नाम दुर्लभ है भाई गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ राम नाम जन पाले सोए पूरे गुर से प्राप्त होए हर का पाना मन्ने से जन प्रवान गुर के शब्द नाम निशान सो से वो जो कल रहा तार नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों महला तीजा कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म खाए पाहे कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लिहो जमाई पैरों महला तीजा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद डुबदा मनमुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई मर मर जमे ठौर न पावे बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देओ बुझाई हों मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्दे रोग न जाई रहाओ सिमरत शास्त्र

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ। आपके पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुरमुख मन वसाए आप तरे सगले कुल तारे जिनी राम नाम लिवलाए मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब उच्च पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुर जिनी न सेविया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति ज्योत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हों मैं माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुर मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार, किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए, दिते संत जना को आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख न होई, जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ, अन दिन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जम जाली राव, गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिये सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता तत पाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझते बाहर कोई ना है, हर सुख दाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राखिया भावे तुझसे नेड़े कोई न जावे। तू जल थल मैयल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा।

तातू गुर शब्दी हर का डे मार रहो, जिनका हर सेती मन मानिया, जिनका रज हर आप सवार, जिन चूकी मोताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत ता किसकी जय, जे कुछ होवे हर बाहर, जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते, ओ पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याय है, जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरों मेला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का डे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नक काटे सुजनहारी, हर आप बुलावे आप बोले।

कहो कबीर इहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पचाना। कहरो महला पंजवा, दस मिर्गी सहजे बंद आने, पांच मिर्ग बेदे शिव की बाने। संत संग ले चढ़ो शिकार, मिर्ग पकड़े।

नानक कह कर केवल नाम पैरों महला पंजवा। जे सो लोच लोच खावाया साकत हर हर।

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरो महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद पाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहा रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत जीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभु लिए मिलाए नानक प्रभु शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ

होवै। जीवत बहुर न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहे ने काम। राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। नानक दास इहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल। दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए तैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप। पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम।

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप समायन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मेला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभु।

को सिमरै मनमुख अंध अज्ञाना हर की पगत करै तिन निंदै निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभु का साचत कहते मेरा अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पर जल फेरा होम जग जप तप सब संजम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप कहे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरो महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड

पहला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसंक निकट डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु सब

जिस तू राखे कुछ कौन मारे है, सब तुझ ही अंतर सगल संसार है। कोट उपाव चितवत है प्राणी, सोहो वैजे करे चोज विदानी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरे दरबार राव। जिनसे व्या निरपो सुख दाता।

जिस ऊपर नजर करे करतार, किस जन के सब काज सवार, किसका राखा एको सोए, जन नानक अपर नफा चै कोए, पैरों मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर, तौ करिए जे विसरे नर हर, तौ करिए जे दूजा पाए, क्या करिए जा रहा समाए, माया मोह करे कड़पतिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहा।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै

वासन रोग पवर विनसानो, पेट रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटहे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोक पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, रुमन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत

पूरन सव्यासा मित अंधेर पय परदासा अनहद शब्द अचरज विस्माद गुरु पूरा पूरा प्रसाद जाको प्रगट पय गोपाल ताके दर्शन सदा निहाल सर्व गुणा ताके बहुत निधान जाको सतगुरु दियो नाम जाको पेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रभु पाए ताकी रेन बिरला को पाए हैरो महला पंजवा सुतवत पाप नालक आवे बेसुआ भजत किसने शरमावे सारो दिन मजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर पर माया लग पूलो संसार आप पुलाया पुलावन हारे राच रहा बिरथा व्यवहार राओ एक माया

पूरन होत ना कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

का स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाग प्रभु कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते सही प्रधान नानक जा कै नाम विधान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता तू

दे रंग रसमाने कट कट अंतर तुम्हे समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी माया ते कमल विलास हौं बलिहार जाऊं गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव दया करो ठाकुर प्रभु मेरे गुण गावे नानक।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लते न जाए जा का परवासा सब कट माए।

फिर पाप सा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, विख्या का

नानक आया सो परवान। पैरों महला पंजवा, संत की निंदा जोनी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दूप साम, दान दैत निंदक को जाम, संत संत

ज्ञान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौ नसे जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप किस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे किस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे दुख न आवे ता कै जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रति

हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ। अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम तिराए हर हर हरे।

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरो महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

नानक को गुरु पै दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो, तीरथ नाए कहां सुत सैल, मन को व्यापे हो मैं मैल। कोट कर्म बंधन

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैन ते आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किछ बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्दे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्दे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिय नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिल माहे, पार ब्रह्म वसिया मनिया।

गायन आद जुगाद भगत गुण गायन तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वार्थ पैरो महला पंजवा पै को पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रयो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्स बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी।

पंजवा सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका अमर नामे टै कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिसका रूप जाके अंतर बसे हर नाम।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुरु का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना

हम मूड मुगद किछ बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई, जो तुद पावे सोई करसी, अवर न करना जाई, जगत उपाय तुद तंदे लाया, पूंडी कार कमाई, जन्म पदार्थ जुए हारिया, सबदे सुरत न पाई, मन मुख मरे तिन किछू न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिव लाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तिन कै

कहो नानक तत्ते तत मिलाया पैरों महला पंजवा कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल कोट महेश उपाय।

राम राजा नौनिध मेरे संपहेत कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात।

पहचाना। उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज में बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।